0: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে জয়া ভারতী। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। दो दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in their countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Sevatirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. He encouraged them to combine India's civilizational strength with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global management. The Prime Minister called upon the officer trainees to serve as catalytic agents for India's economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. He said that a website is often the first gateway through which people interact with an institution and called for greater use of technology to make the delivery of consular and other services more seamless, responsive and citizen-centric. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions, and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary, ERS, Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
2: Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will undertake an official visit to Canada and the United States beginning today. The Finance Ministry said the focus of the visit will be on strengthening bilateral economic and financial partnerships, deepening investment linkages, and advancing cooperation on shared global economic priorities. West Bengal government will form a new disaster response force called Arjun Bahini by recruiting Agnivis to deal with emergencies. Chief Minister Suvendu Adhikari said the force will become operational in September. So far, 200 personnel have been selected through the Sainik Board. Of them, 100 will be stationed in Kolkata, 50 in the hills and 50 in Sagar. The Chief Minister said the force will be equipped with modern technology to speed up rescue operations in disaster hit areas. Modeled on the lines of the NDRF, the force will be equipped with modern machinery and they will be able to respond immediately to any kind of disaster. Mr. Adhikari also announced that 20% reservation will be provided for Agnivis in recruitment to the Fire and Emergency Services, Forest Department, Police and Disaster Management Department. In men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal powered India to a hefty 503 for 9 declared in their first innings against host Sri Lanka on a rain-disrupted second day of the Colombo Test. And that is the end of this news bulletin.
4: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। এখন অনুষ্ঠান পরিচিতি জানিয়ে দেব সঞ্চয়িতা ও গীতাঞ্জলির আজকের সারাদিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে। সঞ্চয়িতার প্রথম অধিবেশনে একটু পরে সকাল 6:15 সুবদ্ধ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন সেতার পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 6:25 রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এরিনা মুখোপাধ্যায়, 6:35 রামচরিত মানস 213 পর্ব, 6:45 ভক্তিগীতি শিল্পী সুদেব চট্টোপাধ্যায়, 7:10 যুববাণীর অনুষ্ঠান সুপ্রভাত উপস্থাপনায় বিতোষক চক্রবর্তী, 8:30 আধুনিক গান শিল্পী পরিমল ভট্টাচার্য, 8:50 দোতারা শিল্পী স্বপন কুমার বর্মন, 9:10 রাজধারা উপস্থাপনায় পাপিয়া ভট্টাচার্য, অঞ্জুমান 10:15 উপস্থাপনায় তালাত সালাউদ্দিন, 11:00 পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হিটস অল দ্য ওয়ে উপস্থাপনায় অভিরূপা ভাদুরী, 12:00 সুরভি উপস্থাপনায় পাপিয়া ভট্টাচার্য, 12:20 1:10 পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় অভিরূপা ভাদুরী, 2:30 খেয়াল শিল্পী সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চয়িতার দ্বিতীয় অধিবেশনে বিকেল 5:10 রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এরিনা মুখোপাধ্যায়, 5:20 উর্বশী উপস্থাপনায় অমরনাথ ভট্টাচার্য, 6:10 কথিকা বলবেন অমরনাথ ভট্টাচার্য, 6:30 গুলগুলশান উপস্থাপনায় অমরনাথ ভট্টাচার্য, 7:10 নজরুল গীতি শিল্পী পরিমল ভট্টাচার্য, 7:30 দর্পণ উপস্থাপনায় অমরনাথ ভট্টাচার্য, 8:00 ছায়াছবির গান, 8:15 নানা রঙের গান, 8:30 স্পটলাইটের বাংলা রূপান্তর, 9:16 স্পটলাইট, 10:30 পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান শিল্পী অনুপম দত্ত, এরপর পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুষ্ঠান জ্যাজ টাইম উপস্থাপনায় অভিষেক মণ্ডল, 11:10 হিন্দি ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান। গীতাঞ্জলির প্রথম অধিবেশনে সকাল 6:30 আজকের চাষবাস কথিকা নারকেল চাষে ফল ঝরা ও তার সমাধান বলবেন অধ্যাপক অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, 6:40 আপনার স্বাস্থ্য কথিকা কেন নেত্রদানের অঙ্গীকার করবেন বলবেন ডাক্তার সাগ্নিক সূর্য দাস, 6:45 প্রাত্যহিকী উপস্থাপনায় দেবদুলাল দে এবং নিবেদিতা নাগ তহবিলদার, 7:45 রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এরিনা মুখোপাধ্যায়, 8:00 জানা অজানায় কথিকা আশ্চর্য সেই কোয়ান্টাম যুগ বলবেন ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তী তৃতীয় পর্ব, 8:05 নজরুল গীতি শিল্পী পরিমল ভট্টাচার্য, 8:20 উত্তরণ, 8:30 শুনবেন সেতার শিল্পী দেবরাজ চট্টোপাধ্যায়, 9:00 গানে গানে বাংলা ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান, 9:25 জেলার চিঠি, 9:30 গানে গানে শেষাংশ, 10:00 গানের ভেলা লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় বিদিশা রায়, 11:00 যুববাণীর অনুষ্ঠান খেলাধুলা উপস্থাপনায় অর্ণব চক্রবর্তী ও কিংসু ঘোষ, 12:00 ভক্তিগীতি শিল্পী সুদেব চট্টোপাধ্যায়, 12:15 দোতারা শিল্পী স্বপন কুমার বর্মন, 12:33 উনজুমে তুনো ফসল, 1:00 নির্বাচিত নজরুল গীতি, 1:45 মাননীয় এসু, বয়স্ক নাগরিকদের জন্য লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ডালিয়া দাস, 2:30 সাঁওতালি অনুষ্ঠান। গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় অধিবেশনে বিকেল 5:00 ক্রীড়াঙ্গন উপস্থাপনায় অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাইরে ঘুরে সর্বভারতীয় নৌচালনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি বাইরে থেকে রেকর্ড করে এনেছেন সঞ্জয় হাজরা, 5:30 বিদ্যার্থীদের জন্য একাদশ শ্রেণীর পরিসংখ্যান বিদ্যা বিষয়ে পাঠদানে শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক কল্লোল গড়াই সঙ্গে দুই শিক্ষার্থী, 6:05 সাঁওতালি অনুষ্ঠান, 6:15 সাঁওতালি অনুষ্ঠান, 6:38 কিষাণবাণী জীবিকা ও পুষ্টি সুরক্ষায় মাছ হারিয়ে যাওয়া ছোট মাছ এ বিষয়ে ডক্টর অপূর্ণা রায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণে সুব্রত চক্রবর্তী, 7:10 তর্জা গান পরিবেশনায় পবিত্র কুমার মণ্ডল ও সহশিল্পীরা, 7:30 সমীক্ষা, 8:00 আজকের প্রসঙ্গ প্রযোজনা আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগ, 8:15 শহর কলকাতা অনুষ্ঠানটি স্টুডিওর বাইরে থেকে রেকর্ড করে এনেছেন দেবিকা মুখোপাধ্যায়, 8:30 কথায় কাহিনী নাটক নিরাপত্তা কর্মী রচনা সুন্দর মুখোপাধ্যায় প্রযোজনা আশিস গিরি, 8:45 অর্থনীতির দুনিয়া আয়কর ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন অমিত রায় চৌধুরী সিএমএ এবং অধ্যাপক ডক্টর অভিজিৎ কুণ্ডু, শুনবেন প্রথম পর্ব প্রযোজনা শাহনাজ আব্দুর রউফ, 9:00 খেয়াল সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, 9:30 শ্রবণী স্বরচিত কবিতা পাঠে পাপড়ি গুহ ও প্রবাল কুমার বসু, 10:00 বাংলা ছায়াছবির গান, 10:30 দোতারা শিল্পী স্বপন কুমার বর্মন, 10:50 আধুনিক গান শিল্পী পরিমল ভট্টাচার্য, 11:10 তবলা শিল্পী পণ্ডিত জ্যোতির্ময় রায় চৌধুরী। শুনলেন অনুষ্ঠান পরিচিতি, এখন সুভদ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন সেতার প্রথমে রাগ কোমল ঋষভ আশাবরী ও পরে ললিত, শিল্পী পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को

अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

0: আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা। পরবর্তী অনুষ্ঠান দিল্লি কেন্দ্র থেকে সংবাদ।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা রিচা ঝা। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युव कूटनीतिज्ञान स्वनियुक्ति देशेषु जनस्तरे दृढ़ संपर्कं स्थापयितुं तथा स्थानीय समुदायैः सह भारतस्य संबंधान अधिकं सुदृढ़ीकर्तुं च प्रेरितवान्। सेवातीर्थे भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य प्रशिक्षु अधिकारिभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी तान् पारंपरिक कूटनीतिक वृत्तेः परे स्वसंपर्क जालस्य विस्तारं कर्तुं अथ जनैः सह संपर्कं च सुदृढ़ीकर्तुं प्रोत्साहितवान्। असौ भारतस्य रिक्थ सम्बद्ध शक्तीनां प्रौद्योगिक्या नवोन्मेषेण प्रभावी संप्रेषणेन च सह संयोजनं कृत्वा भारतस्य वैश्विक संपर्कं अधिकं सुदृढ़ीकर्तुं प्रेरितवान्। असौ भारतीयोपक्रमाणाम् अंकीयोपस्थितिं सुदृढ़ीकर्तुं महत्त्वमपि प्रतिपादितवान्। विश्वस्य युवकेषु भारतं प्रति अधिकरुचिं जनयितुं भारत को जानिये इत्येतस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रमस्य उपयोगस्य असौ परामर्शं प्रदत्तवान्। प्रशिक्षु अधिकारिभिः स्वप्रशिक्षणस्य भारतदर्शनस्य च अनुभवाः अभिव्यक्ताः। अस्मिन् समूहे देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च आगताः 50 भारतीय विदेश

0: सेवा प्रशिक्षु अधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सर्वेभ्यः संस्थानेभ्यः अन्तः प्रवेशस्य विरुद्धं कठोर पदक्षेपानि स्वीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीशाहः निर्देशितवान् यत् बहुसंस्थानकेन्द्रस्य मञ्चे उपलब्धानां सूचनानां कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः आधारेण विश्लेषणं करणीयम्, येन विविधराष्ट्रिय सुरक्षाह्वानानां प्रतिकाराय मानकसञ्चालनप्रक्रियाः निर्मातुं शक्यन्ते। सम्मेलनस्य प्रथमदिने राष्ट्रिय सुरक्षायाः महत्वपूर्णेषु पक्षेषु चर्चा अभवत्। तेषु आतंकवाद विरोधी आह्वानानां प्रतिकारः, बहुसंस्थानकेन्द्र माध्यमेन गुप्त सूचनानां एकीकरणं, विश्लेषणं, कार्यान्वयनं च, मादक द्रव्याणां नियन्त्रण सम्बद्ध दृष्टिपत्रम्, अवैध प्रवासिनां परिचयः, निर्वासनं च, तथा तेषां प्रतिकाराय नीति निर्माणम् इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उपवेशने द्विपक्षीय व्यापारः, आर्थिक सहयोगः अथ आगामि उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि चेत्यादिषु विषयेषु चर्चा अभवत्। रूस स्थितः भारतस्य राजदूतः विनय कुमारः एवञ्च संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्यौ आस्ताम्। उपवेशनावधौ डॉ एस जयशंकरेण विशेषतः आर्थिक सहयोगे, व्यापार क्षेत्रे अथ ऊर्जा क्षेत्रे च भारत रूसयोः सहमतिं सुदृढीकर्तुं प्रतिपादितम्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदाता अजीत डोभालः ह्यः चीनस्य द्विदिवसीय यात्रायै बीजिंग नगरं प्राप्तवान्। असौ अद्य स्वीय चीन देशस्य समकक्षेण विदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह उभयोः देशयोः सीमाविवाद सम्बद्ध विषये विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः 25वें चरणे भागं ग्रहीष्यति। ह्यः वार्ताहर सम्मेलने विशेष प्रतिनिधीनां वार्ताम् उद्घोषयन् चीन देशस्य विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लिन जियान उक्तवान् यत् डोभालः, वांग यी च सीमा विवादस्य अतिरिक्तम् अन्येषु विषयेषु अपि घनचर्चां करिष्यतः। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य एम्स्टेलविन नगरे आयोजिते FIH इत्यस्य विश्वचषकस्य पूल क्रीडायां भारतीय पुरुषदलं अर्जेंटीना दलेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। दो दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है।

0: गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानियो के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान SLR, राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूकों सहित 23 हथियार बरामद किए गए। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service, IFS, at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. He encouraged them to combine India's civilizational strengths with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister called upon the officer trainees to serve as a catalytic agents for India's economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi yesterday, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create standard operating procedures to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions, and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating cases.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री

0: अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। 2 दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
2: BJP के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता

0: सकते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगी। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
1: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है, बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच आखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के

0: दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेनदेन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. UN Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. We have more from a correspondent.
3: Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilizational strength with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agent for countries' economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. Mr. Modi urged the officer trainees to work towards making India a more attractive global tourism destination by showcasing its civilizational cultural and geographical strength. He suggested leveraging the Bharat Ko Jaaniye No India quiz to generate greater interest in India among young people across the world and encourage the use of AI.

0: और संचिता चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया 9:10 का एग्जैक्टली और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम रसधारा। हिंदी फिल्मी गीतों की अपनी एक अलग दुनिया है। कभी कोई गीत हमें बचपन में ले जाता है, कभी किसी पुराने रिश्ते की याद दिलाता है, कभी किसी चेहरे को आंखों के सामने ला खड़ा करता है, कभी कोई गीत ऐसा होता है जो हमें कुछ देर के लिए ठहर कर जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की हमारी बातचीत भी कुछ ऐसी ही है। आज हम बात करेंगे उन आंखों की जिनसे हम यह खूबसूरत दुनिया देखते हैं, उस नेत्रदान की जिसके माध्यम से किसी इंसान के जाने के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी किसी दूसरे की दुनिया में उजाला कर सकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेत्रदान जीवन के बाद जीवन दान के बारे में।
1: इसके आंखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी

हम अक्सर कहते हैं कि आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, आंखें भावनाओं को व्यक्त करती हैं, आंखें रिश्तों को पहचानती हैं, आंखें खुशी में चमकती हैं और दुख में नम हो जाती हैं। हिंदी फिल्मों ने तो आंखों को भावनाओं की पूरी भाषा बना दिया है। कभी नायक की आंखों में प्यार दिखाई देता है, कभी माँ की आंखों में ममता, कभी किसी बिछड़े हुए इंसान की आंखों में इंतजार और कभी किसी विदाई की आंखों में आंसू। शायद इसलिए नेत्रदान के बाद सिर्फ एक चिकित्सकीय विषय नहीं रह जाती, ये इंसानियत और संवेदना की बात बन जाती है।

दोस्तों, नेत्रदान का सरल अर्थ है मृत्यु के बाद अपनी आंखों के उपयोगी उत्तक खासकर कॉर्निया दान करना। कॉर्निया आंख के सामने का पारदर्शी हिस्सा होता है और कई लोगों में कॉर्निया के खराब या क्षतिग्रस्त होने के कारण दृष्टि प्रभावित होती है। ऐसे मामलों में उपयुक्त दान किए गए कॉर्निया का प्रत्यारोपण उनकी दृष्टि वापस लाने में मदद कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त होने के बाद भी उसके शरीर का एक हिस्सा किसी दूसरे इंसान के लिए नई उम्मीद बन सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो दुनिया को धुंधला देखता है। वो अपनी माँ की आवाज पहचानता है लेकिन माँ का चेहरा साफ नहीं देख पाता। वो स्कूल जाता है, दोस्तों की बातें सुनता है, खेलते हुए बच्चों की आवाज सुनता है, लेकिन उसकी दुनिया को अपनी आंखों से ठीक तरह से देख नहीं पाता। अब सोचिए कि किसी दूसरे परिवार ने अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद नेत्रदान का निर्णय लिया और उस दान से किसी ऐसे व्यक्ति की दृष्टि वापस पाने का अवसर मिला। उस पल का महत्व शायद शब्दों में समझाना मुश्किल है। एक तरफ किसी परिवार ने अपने प्रियजन को खोया, दूसरी तरफ किसी परिवार को दुनिया को देखने की नई उम्मीद मिली। यही नेत्रदान की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

तो इसीलिए तो नेत्रदान को केवल आंखों का दान कहना शायद थोड़ा कम होगा। ये किसी दूसरे इंसान को देखने का अवसर देना है, ये किसी के लिए सुबह का सूरज देखने की संभावना है, ये किसी माँ का चेहरा देखने की संभावना है, किसी बच्चे की मुस्कान देखने की संभावना है, बारिश को अपनी आंखों से देखने की संभावना है और जिंदगी में उन छोटी छोटी चीजों को देखने की संभावना है जिन्हें हम अक्सर देखते हुए भी उनकी कीमत नहीं समझते हैं।

अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन नेत्रदान कर सकता है। इस विषय में समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उम्र ज्यादा हो तो नेत्रदान नहीं किया जा सकता। कुछ लोग मानते हैं कि चश्मा पहनने वाला व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर उनकी अपनी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है तो उनकी आंखें किसी काम की नहीं होंगी। लेकिन सिर्फ उम्र, चश्मा या ऐसी किसी एक सामान्य बात के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति नेत्रदान के लिए उपयुक्त है या नहीं। अंतिम निर्णय विशेषज्ञ चिकित्सकीय जांच के बाद ही करते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि नेत्रदान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति सही संस्था से जाकर जानकारी ले और अपना संकल्प दर्ज करे। एक और बात बहुत जरूरी है, नेत्रदान जीवित रहते आंखें निकालने की प्रक्रिया भी नहीं है, ये मृत्यु के बाद किया जाता है, इसलिए इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी सम्मान पूर्वक पूरी प्रक्रिया करते हैं और अंतिम दर्शन के समय चेहरे के स्वरूप को सामान्य बनाए रखने का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की भी है। मान लीजिए आपने आज नेत्रदान करने का संकल्प ले लिया, लेकिन आपके परिवार को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मृत्यु के बाद उस इच्छा को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए नेत्रदान का संकल्प लेने के साथ साथ अपने परिवार से बात करना भी उतना ही जरूरी है। उन्हें बताइए कि आपने नेत्रदान की इच्छा व्यक्त की है। उन्हें बताइए कि आपके जाने के बाद अगर चिकित्सकीय रूप से संभव हो तो आपकी इच्छा का सम्मान भी किया जाए।

दरअसल हम अपने जीवन में कितनी सारी चीजों के बारे में परिवार से बात करते हैं। घर कहाँ बनेगा, बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी, किसकी शादी कब होगी, कौन सा त्योहार कैसे मनेगा, कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सा गाना अच्छा लगता है, लेकिन मृत्यु और अंगदान जैसी बातों पर अक्सर चुप हो जाते हैं। शायद इसलिए हमें मृत्यु की बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मृत्यु के बारे में संवेदनशील और सकारात्मक बातचीत करना मृत्यु को बुलाना नहीं है, ये जीवन के मूल्य को समझाना है। और यही बात हिंदी सिनेमा के गीतों को भी इतनी खास बनाती है। फिल्मों में आंखों के जरिए प्यार की कहानी कही गई, बिछड़ने का दर्द दिखाया गया, इंतजार दिखाया गया और उम्मीद भी दिखाई गई। हमारी फिल्मी दुनिया ने आंखों को हमेशा भावनाओं से जोड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि किसी की आंखें उनके जाने के बाद किसी और की दुनिया में रोशनी ला सकती है। तो इसके पीछे सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि एक बहुत गहरी मानवीय भावना भी है ना।

तो दोस्तों यही बात हिंदी सिनेमा के गीतों को भी इतनी खास बनाती है। फिल्मों में आंखों के जरिए प्यार की कहानी कही गई, बिछड़ने का दर्द दिखाया गया, इंतजार दिखाया गया और उम्मीद भी दिखाई गई। हमारी फिल्मी दुनिया ने आंखों को हमेशा भावनाओं से जोड़ा है, इसलिए जब हम कहते हैं कि किसी की आंखें उसके जाने के बाद किसी और की दुनिया में रोशनी ला सकती है, तो इसके पीछे सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि एक बहुत गहरी मानवीय भावना भी है। एक और आम भ्रम है कि नेत्रदान करने से परिवार अंतिम दर्शन नहीं कर पाएगा, ये सही नहीं है। प्रक्रिया प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा सम्मान पूर्वक की जाती है और सामान्यतः चेहरे के स्वरूप पर कोई स्पष्ट विकृति नहीं आती जिससे अंतिम दर्शन प्रभावित हो, इसलिए केवल सुनी सुनाई बातों के कारण किसी अच्छे काम से पीछे हटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक सवाल और है कि क्या नेत्रदान का लाभ सिर्फ एक व्यक्ति को मिलता है? दान किए गए उत्तक और उनकी चिकित्सकीय उपयोगिता परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन एक दान से एक से अधिक लोगों के उपचार में मदद मिलने सकने की संभावना भी होती है, यानी किसी एक व्यक्ति का निर्णय कई लोगों के लिए उम्मीद बन सकती है। सोचिए हम जीवन भर कितनी चीजें जमा करते हैं, कपड़े, किताबें, तस्वीरें, गहने, घर के सामान और न जाने क्या क्या, लेकिन अंत में इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। फिर क्यों ना जीवन में ही ये तय कर लिया जाए कि हमारे जाने के बाद भी अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा किसी और के काम आ सकता है तो उसका दान किया जाए।

दोस्तों नेत्रदान की खूबसूरती यही है कि इसमें देने वाला व्यक्ति शायद उस इंसान को कभी देख ही नहीं पाए जिसकी जिंदगी में उसके दान की रोशनी आएगी। न कोई पहचान होगी, न व्यक्तिगत रिश्ता, न बदले में कुछ पाने की उम्मीद। फिर भी एक इंसान दूसरे अनजान इंसान के लिए कुछ छोड़ जाता है। यही तो है असली इंसानियत, और शायद यही वजह है कि नेत्रदान को जीवन के बाद जीवन दान भी कहा गया है। जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कई वर्षों से दुनिया को ठीक से देख नहीं पा रहा। उसके लिए आंखों की रोशनी सिर्फ सुविधा नहीं, वो स्वतंत्रता है, वो आत्मविश्वास है, वो अपने परिवार को देखने की खुशी है, वो अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने का माध्यम है। इसलिए जब किसी को दृष्टि वापस पाने का अवसर मिलता है तो उसके जीवन में बदलाव सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रहता बल्कि कहीं ज्यादा होता है। वो पढ़ सकता है, काम कर सकता है, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकता है और अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने की दिशा में आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए नेत्रदान के बारे में बात करना जरूरी है, केवल एक दिन नहीं बल्कि लगातार, क्योंकि जागरूकता तभी काम करती है जब जानकारी घर घर पहुंचे।

तो दोस्तों नेत्रदान एक ऐसा निर्णय जिसमें देने वाला कुछ खोकर किसी और को बहुत कुछ दे जाता है। एक ऐसा दान जिसमें देने वाला शायद उस रोशनी को कभी नहीं देख पाता, लेकिन किसी और की आंखों में वो रोशनी हमेशा के लिए लौट सकती है। यही है नेत्रदान, यही है इंसानियत, और शायद इसी को कहते हैं जीवन का के बाद जीवन दान। तो दोस्तों आप सुन रहे थे रसधारा, हिंदी फिल्मी गीतों की इस खूबसूरत दुनिया में आज हमारी बातचीत यही समाप्त होती है, लेकिन उम्मीद है कि आज की बात आपके मन में थोड़ी देर और रहेगी, शायद इतनी देर कि आप घर पहुंचकर अपने परिवार से एक सवाल पूछें, अगर मेरे जाने के बाद मेरी आंखें किसी की दुनिया रोशनी कर सकती है तो क्या मैं नेत्रदान करना चाहूंगा। उस सवाल का जवाब आपका अपना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं पापिया लेती हूँ विदा, मिलूंगी ठीक दोपहर के 12 बजे कार्यक्रम सुरभि के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूं ही मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। थोड़ी देर में सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिकों को दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय दूतावासों की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शोभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हो, साथ ही इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च करके भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:16 और 2 सेकंड हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इशारा है आपकी मनपसंद प्रोग्राम अंजुमन का और साथ है आपकी दोस्त तलत सलाहुद्दीन। और एक बार फिर आप सबों को मेरा प्यार भरा आदाब। तेरी आंखों में मोहब्बत का जहां देख लिया, तेरी आंखों में मोहब्बत का जहां देख लिया, एक पल में हमने सारा समा देख लिया। या दोस्तों, मोहब्बत शह ही ऐसी है कि जब किसी से हो तो फिर पूरी दुनिया क्या उसके सामने फीकी लगती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का और देखते हैं कि आज के आईने में हमारे लिए क्या खास है। डॉक्टर कृपोंदा वरियार स्वामीकल। दोस्तों, तमिलनाडु भारत से ताल्लुक रखने वाले शिव रूहानी उस्ताद थे। उनकी पैदाइश 25 अगस्त 1906 में हुई थी। वेलोर जिला तमिलनाडु में उनकी पैदाइश हुई। वो मुरुगन के अकीदत मंद थे, जिन्होंने तमिलनाडु में बहुत से मंदिरों की तामीर नौ और काम मुकम्मल करने में मदद की। अंजुमन इस अजीम शख्सियत को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता है। दोस्तों, यहाँ बताना जरूरी है कि हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए यूपीआई का आगाज हुआ था और यूपीआई ने डिजिटल अदायगियों के इनकलाब के 10 साल मुकम्मल किए हैं। आलमी सतह पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम अदायगी निज़ाम के तौर पर इनकी शनाख्त हुई है। दोस्तों, लेन देन के तादाद में तकरीबन 13,000 गुना इजाफा और सालाना लेन देन की तादाद माली साल 2016-17 में 1.78 करोड़ से बढ़कर माली साल 2025-26 में 24,162 करोड़ से ज्यादा हो गई है। दोस्तों, माली साल 2016-17 में लेन देन की मालियत 0.07 लाख करोड़ थी और जो अभी बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो तकरीबन 4,000 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, ये था आज का आईना और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक निहायत खूबसूरत सा रोमानी नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। इस कलाम को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। आप खुद ही

सुनेंगे। उन्होंने कितनी खूबसूरती से, इतने प्यार से इस नगमे को लिखा है और इसमें महबूब की खूबसूरती को कितनी खूबसूरत से अंदाज में बयान किया गया है। मौसिकी है राहुल देव बर्मन की।

जी हाँ दोस्तों, सारा खेल ही देखने का है। और जब साथ सामने आपका पसंदीदा शख्स हो तो फिर क्या कहने। तो संजुमन में वक्त हो रहा है आगे बढ़ने का और आप

सब जानते हैं कि आज दिन है मंगल और आज के दिन हम आपके लिए बतौर खास लाते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी में रहनुमाई में बहुत कारामद साबित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लाते हैं आपके लिए रोजगार के मौके। दोस्तों, रोजगार की तलाश सबसे बड़ा चैलेंज और ऐसी हालत में इसका इंतखाब और भी अहम होता है, लेकिन

दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल डिजाइन पर। टेक्सटाइल डिजाइन यानी फैब्रिक बनाने या सजाने का तकनीकी और तकनीकी अमल है। इसमें रेशो से कपड़ा कैसे बनाया जाता है और इसके सतह पर पैटर्न, रंग या प्रिंट्स कैसे शामिल किए जाते हैं, ये सीखने का अमल है। मलबूसात, प्रिंटशुदा और सतही डिजाइन, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग या डिजिटल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए बसरी नमूनों का अतलाक करके कढ़ाई, लिहाफ, रंगने या बाटिक शिबुरी जैसे मजाहमती तकनीकों के जरिए इसे शामिल किया जाता है। दोस्तों, फॉक्स फाइबर के इंतखाब के कलीदी इलाके में कुदरती सिल्क, सिल्क या सिल्क पर मबनी फिक्स, सिल्क या सिल्क पर मबनी मवाद का इंतखाब होता है। दोस्तों, इसमें फैशन के मलबूसात से लेकर घर की सजावट, तिब्बी अशिया तक कपड़े तक कपड़ा इसके आखिरी इस्तेमाल के मुताबिक है। फाइबर से लेकर फैब्रिक तक टेक्सटाइल का डिजाइन फैशन के कारोबार का एक अहम जूज है। बुने हुए प्रिंट डिजाइन, कढ़ाई और जेबाइश टेक्सटाइल के बुनियादी मजामिन में एक साथ मिलकर तुलबा के लिए एक वसी और वर्सटाइल तरबियत फराहम करते हैं। टेक्सटाइल डिजाइन का नसाब तुलबा को मवाद तख्लीक करने, तजुर्बा करने और इख्तरा करने का काफी मौका फराहम करता है। ये प्रोग्राम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन की तख्लीकी कुवतों के इंजमाम पर सवार है और इन तारीखी, समाजी और सकाफती सयाक व सबाक को भी जहन में रखता है जिनमें डिजाइनर्स आज काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिजाइन ताने बाने के ढांचे और सतहों के लिए डिजिटल और गैर रिवायती अंदाज को दरियाफ्त करने के लिए खसूसी सॉफ्टवेयर सीखने पर भी जोर दिया जाता है। दोस्तों, तुलबा को क्राफ्ट क्लस्टर अकदाम के जरिए एक क्राफ्ट माहौल से भी वाकफियत हासिल होती है जो उन्हें रिवायती तरीकों से आगाह करता है। टेक्सटाइल डिजाइन के तुलबा अपने आखिरी साल में ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसे टेक्सटाइल मिल्स, एक्सपोर्ट हाउस, घरेलू और मलबूसात के खुर्दा ब्रांड्स, डिजाइनर्स, एनजीओस के जरिए स्पॉन्सर किया जाता है या वो खुद स्पॉन्सर होते हैं। दोस्तों, टेक्सटाइल डिजाइनर बनने के लिए आपको बुनियादी फंकराना और तकनीकी महारतें सीखनी होंगी, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना होगा और सनत का तजुर्बा हासिल करना होगा। आप डिजाइन के असूलों का मुताला, डिजिटल टूल्स में महारत हासिल करने और ताने बाने ढांचे को समझकर शुरू कर सकते हैं। टेक्सटाइल डिजाइन में मौजूदा रुझानात टेक्सटाइल सीखने वाला, जी हाँ, टेक्सटाइल डिजाइन की मुसलसल मांग है जो पायदार मवाद अपनी मर्जी के मुताबिक घर की सजावट और डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए जबरदस्त दबाव के जरिए कारफरमा है, जबकि रिवायती मलबूसात की मंडियों को बदलते हुए रुझानात का सामना है। माहौल दोस्त कपड़े और टेक्निकी टेक्सटाइल में खसूसी किरदार बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों फैब्रिक की पहचान बढ़ गई है, फैब्रिक के अकसाम बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं लोग फैब्रिक के इंतखाब में बहुत मोहतात हो गए हैं। इस प्रोफेशन को का इंतखाब करने से कबल इस बात का खसूसी ख्याल रखना चाहिए और जब इसमें आप शामिल हैं तो फिर हमेशा जहां डिजाइनिंग की बात आती है, साथ में फैब्रिक का इस्तेमाल इस टेक्सटाइल डिजाइनर के लिए सबसे अहम जूज है। साथ ही फैशन का ख्याल भी रखना है कि आलमी बाजार में या ग्लोबल मार्केट में किस तरह का फैशन जारी है, इसका खास ख्याल रखते हुए आप बखूबी इस प्रोफेशन को अपना सकते हैं और उम्मीद है कि इस प्रोफेशन में आपको कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आप अभी समाप्त फरमा रहे थे रोजगार के मौके के तहत टेक्सटाइल डिजाइन पर हमारी खास पेशकश।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं जुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और आज मंगल है, यानी सिर्फ आज मंगल नहीं, इस महीने का आखिरी मंगल है। और हमेशा की तरह हर महीने के आखिरी मंगल हम आपके लिए हिफ्जान सेहत के से जुड़े कुछ मौजूदात लेकर आते हैं। और आज के इस हिस्से में हमने बातचीत की है डॉक्टर शकील अख्तर से, पेश है उनके साथ हमारी खसूसी बातचीत।
1: कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। दोस्तों गमे जहाँ का हिसाब करते करते अक्सर हम इस कदर गुम हो जाते हैं कि खुद की सेहत से भी बेफिक्र होते जाते हैं। अब बात जब सेहत की हो तो किसी ने खूब कहा है, तंगदुस्ती अगर ना हो सालिक, तंगदस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। मौजूद सामीन, हजार नेमतों से ज्यादा कीमती सेहत के मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे आकाशवाणी कोलकाता के स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डॉक्टर शकील अख्तर, जो जनरल फिजिशियन के साथ सर्जरी में भी महारत रखते हैं। आप डायरेक्टर ऑफ स्टडीज IMS CGP बंगाल स्टेट फैकल्टी के साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल के भी मेंबर हैं। आपका हमारे स्टूडियो आकाशवाणी में इस्तकबाल है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए आपके स्टूडियो आकाशवाणी कलकत्ता में।
1: डॉक्टर साहब, इन दिनों सेहत को लेकर लोग ज्यादा परेशान है क्योंकि इन दिनों बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं जब भी मौसम बदलता है देखा जाता है कि बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसका असर छोटे बच्चों में ज्यादा होता है जब मौसम बदलता है, खासतौर पर जब ठंड के बाद थोड़ा सा मौसम खुशगवार होता है। तो नजला जुकाम के साथ एक बीमारी जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं वो है मिजल्स या सीजनल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो डॉक्टर साहब, इससे लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में ख्यालात हैं और हमारे सामीन भी, उनके जहन में भी मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालात होंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि सीजनल पॉक्स और मिजल्स ये दोनों क्या है और इसे असल इसकी वजह क्या है।
2: ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने बहुत पहले कहा था कि जब जमाना बदले तुम भी बदल जाओ, जमाने की अच्छाइयों को ले लो, बुराइयों को छोड़ दो।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: मगर अभी के जमाने में जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो इतना पैम्पर करते हैं बच्चों को कि वो बजाय अच्छा करने के उनको बीमारी घर में खरीद के ले आते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है हाइजीन का, नंबर एक, नंबर दो पर्सनल केयर का, नंबर तीन बीमारियों से बचने का। तो हाइजीन अगर घर में मेंटेन करते हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में 250 बच्चे होते हैं, अगर उनमें 2-5 बच्चे बीमार हैं तो उनको सेग्रीगेट कर देना चाहिए और उनको स्कूल आने से मना कर देना चाहिए, तो हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। और ये जो दो बीमारियां आपने जिनका जिक्र किया है, चिकन पॉक्स और मीजल्स, ये कंटामिनेशन से ही ज्यादा स्प्रेड करते हैं।
1: जी, मैंने जैसे छूत की बीमारी,
2: छूत की बीमारी जैसे छूत से, छूत कैसे, ये एयरबॉर्न डिजीज है, खांसने से, छींकने से। बच्चे स्कूल में बैठ रहे हैं एक साथ 4-5 बेंच पे, हाथ रख रहे हैं, मुंह भी छू रहे हैं, नाक भी छू रहे हैं, फिर उनको उनको उनको ये स्प्रेड कर जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे बुखार, इनका जो सिम्टम है कॉमन सिम्टम दोनों बीमारियों का, बुखार होता है, नजला जुकाम होता है, छींक होती है। और कभी कभी बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको मिजल या चिकन पॉक्स हो जाता है तो निमोनिया जैसी कैफियत भी हो जाती है, यानी सांस की तकलीफ हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया हुआ है उनको भी ये बीमारी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। लेकिन इस सारी बीमारियों को रोकने का जो सबसे पहला मैंने बताया आपको कि हाइजीन मेंटेन करना, कंटामिनेशन को रोकना और क्रॉस कंटामिनेशन को रोकना, और वैक्सीनेशन इज मस्ट। इसमें जो वैक्सीन पड़ते हैं DPT के, MMR के और DCC के, वो 6-7 किस्म के वैक्सीन होते हैं जो वैक्सीनेशन शेड्यूल में आपको मिलेगा, मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबा शेड्यूल है वो।
1: साहब, जब अभी आपने कहा कि इस बीमारी के बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है मिजल, तो सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आखिर ये है क्या।
2: ये एक वायरस है जो जिसका नाम है, जो चिकन पॉक्स में होता है, इस वायरस का नाम है वेरिसिला जोस्टर वायरस, जिससे ये बीमारी शुरू होती है। ये वायरस ही है,
1: ये एयरबॉर्न है,
2: एयरबॉर्न है ये। अच्छा। कभी भी किसी भी आदमी को पकड़ सकता है। और जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ हेल्थ फाइटिंग नहीं होता है, उनको ये ज्यादा अटैक करता है, उनको

0: ज्यादा परेशान करता है।
1: इसमें उम्र की कोई हद है?
0: उम्र उमूमन बच्चों को ही है ये, जैसे कि 1-2 साल के बच्चों को लेकर 14-15 साल के बच्चों को होता है, लेकिन चिकन पॉक्स अभी बड़ों में भी देखा जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये बड़े वही लोग हैं जैसे मैं हूँ, मुझे कोई पॉक्स का वैक्सीन नहीं पड़ा हुआ है, सिवाय स्मॉल पॉक्स के और कोई वैक्सीन नहीं पड़ा है। लेकिन हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि हम लोगों को बहुत सारी जो वायरल डिजीजेज हैं वो अटैक नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोगों की जो परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है, ऐसे माहौल में हुई है कि हम लोगों ने बहुत सारे इन्वायरमेंटल वायरस को फाइट किया है।
1: माने टॉलरेंस आ गया,
0: टॉलरेंस बहुत ज्यादा हमारे अंदर है। अभी के जो बच्चे हैं उनके साथ मुश्किल क्या है कि माएं जो अभी की माँ है और कपल्स है, वो एक तो डिलेट एज में शादी करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड बर्थ करते हैं। ये करते करते क्या होता है कि लेट एज में बच्चा आता है, बच्चा आने के बाद से डिलीवरी होती है, अमूमन आजकल सिजेरियन बच्चे हो रहे हैं, तो वहां से भी कंटेमिनेशन लग सकता है सिजेरियन से भी। तो ये मेरे ख्याल में प्रिवेंशन नंबर वन, वैक्सीन नंबर टू, और जब बीमारी हो तो अपने किसी भी बच्चे के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन से मिलना, हॉस्पिटल्स में जाना, सेंटर में जाना, हेल्थ सेंटर में जाना। हमारे बंगाल में तो अभी बहुत ही हेल्थ पे काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, अस्पताल बहुत बढ़ गए हैं, नियोनेटल केयर बढ़ गया है, नीकू पीकू जो चीज़ें वो बढ़ गई हैं, इसलिए हम लोग अभी बहुत अच्छा कंट्रोल कर पा रहे हैं इसको।
1: अभी आपने कहा कि जनरली कभी कभी ये भी होता है कि सीजेरियन केस अगर बच्चे का है तब, तो क्या उसी वक्त से ये वायरस वो अपने साथ?
0: नहीं, ऐसा नहीं है।
1: अच्छा।
0: अब ये क्या होता है कि जो सीजेरियन बच्चे होते हैं अगर टर्म पे हो रहे हैं, जैसे कि 9 मंथ 7 डेज हमारा एक टर्म है, ईडीडी जिसको बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एलएमपी यानी कि लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लास्ट मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे, 9 मंथ 7 डेज हम लोग उसमें ऐड करते हैं, उस टर्म पे जो बच्चे होते हैं ठीक होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि प्री मेच्योर बच्चे होते हैं। तो प्री मेच्योर बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वीक होती है, इनको थोड़ा ये सब बीमारी होने का ज्यादा चांसेस रहता है।
1: और ये बीमारी जानलेवा है?
0: नहीं, मैंने आपको इससे पहले कहा कि अगर मिजल में या चिकन पॉक्स में छोटे बच्चों में, यानी कि टेंडर एज के बच्चों, बिटवीन 1 and 5 years, 6 years, 10 years बिलो में ये निमोनिया होता है, तो निमोनिया थोड़ा कॉज कर सकता है। जानलेवा तो नहीं कह सकते, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट के लाइफ एंड डेथ कैसे कब क्या होगा।
1: तो किसी बच्चे को होता है तो सबसे पहले क्या अलामत देखने को मिलती है?
0: इसमें बुखार होगा, नजला होगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, छींक आएगी, और बुखार कभी कभी 102-103 डिग्री फारेनहाइट तक भी जा सकता है।
1: और जिस्म में कुछ निशान पड़ जाते हैं?
0: जिस्म में छोटा छोटा ब्लिस्टर जैसा आ सकता है, चिकन पॉक्स में ज्यादा आता है, मिजल्स में भी आता है। चिकन पॉक्स में जैसे कि मसूर का दाल होता है उस जैसे दाने उभर जाते हैं, और मिजल्स में सरसों का दाना जैसा होता है उस तरह से लाल लाल लाल लाल दाने जिसमें बच्चों के या बड़ों के भी उभर सकते हैं। फेस पे होता है, बॉडी पे होता है, जेनिटेलिया में होता है, बॉडी के किसी भी जगह पर यह हो सकता है। इवन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ओरोफेरिंक्स यानी कि मुंह जो हमारा माउथ है, ओरल कैविटी, उसमें भी कभी कभी पैलेट्स में ऊपर के हिस्से में और गाल के दोनों तरफ के हिस्से में भी कभी कभी ये मिजल का या चिकन पॉक्स का कुछ कुछ दिख सकता है।
1: तो इसकी जो दवाइयां जो होती है वो कोर्स घर पे ही रह के ही मुकम्मल इलाज
0: सकते हैं, अगर ये सीरियस नहीं है, जैसे मैंने बताया कि निमोनिया ना हो, बहुत कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरिया ना हो, डायरिया में डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है, तो हम लोग घर पे भी आराम से विद ऑल ड्यू केयर, हाइजीन और सफाई के साथ हम लोग बच्चों को या बड़ों को जिनको भी हो अच्छे से रख सकते हैं, इलाज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि घर पे भी रख सकते हैं, और हमारा प्रोग्राम खास करके बहुत सारी माएं भी सुन रही होंगी, तो मैं उनके लिए आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर उनके बच्चे को या किसी को इस तरह होता है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए?
0: बच्चों को आइसोलेट कर देना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए, डेली उनका कपड़ा चेंज करना चाहिए, और वार्म पानी, गर्म पानी, नीम गर्म पानी से स्वाब करना चाहिए, नहलाना नहीं चाहिए। और देखिए, एक दादी माँ का नुस्खा है वो हम लोग पहले बच्चे होते थे, हमने देखा भी है, तो लोग क्या करते थे कि जहां माएं रहती थी उसके घर के बाहर एक आग जलाते थे, आग जला के उसको बोरसी बोलते थे हम लोग, तो उसमें रख देती थी।

0: उसका कंसेप्ट ये होता था कि जो लोग भी अंदर आए जाए वहां से वो सैनिटाइज हो जाते थे, क्योंकि आग जब जलती रहती है तो उसमें एक जो एनर्जी पैदा होती है आग से, वो बैक्टीरिया को जर्म्स को किल कर देती है। आने जाने वाले लोग मुमकिन है कि बैक्टीरिया जर्म्स लेके जा रहे हो, तो उनका बॉडी जब उससे टच होते हुए जाता है तो वो खत्म हो जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि नीम का पत्ता बहुत ही हाइजीनिक है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को मेजिल या चिकन पॉक्स है उनके घर में, जहां पे बच्चों को या बड़ों को सुलाया जाए, रखा जाए, नीम का पत्ता वहां पर थोड़ा तोड़ के डेली सुबह डाल दिया या शाम को फेंक दिया, या नेक्स्ट डे फिर उसको चेंज कर ले, तो इसका एक एंटी इन्फेक्टिव इफेक्ट भी है नीम का। नीम जब पढ़ेंगे आप तो डिटेल आपको मालूम होगा।
1: नीम के तो बहुत सारे।
0: और सबसे और जो जरूरी चीज जो इसमें आती है कि प्रिवेंशन ऑफ विजिटर बहुत जरूरी है। बाहर के लोगों को वहां जाने आने से रोका जाए और कहा जाए कि भाई आप दूर से ही देख लो और दुआ करो कि ठीक हो जाए।
1: जनरली छोटे बच्चों में ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बच्चे हैं कहीं ना कहीं, और अमूमन हमारे समाज में अगर देखा जाए तो मध्यवर्ग तबका हो या निचले तबके के लोग हों, वहां पर रिहायशी बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे जगहों में अब उन बच्चों को अलहदा रखने के लिए उनके लिए या तो एक अलग कमरा चाहिए, जो जनरली नहीं होता है, अमूमन नहीं देखा जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या
0: इन हालात में जो आसपास के हेल्थ सेंटर्स हैं वहां से रुजू करना चाहिए कि हमारे पास, ये आप सही कह रहे हैं, मैं भी जिस इलाके में खिदिरपुर बालपुर में रहता हूं तो बहुत सारे लोग फैमिली मेंबर ऐसे हैं जहां एक घर में 7-8 लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोग गर्मी के दिन में तो बाहर निकल के सो जाते हैं, काम चला लेते हैं, लेकिन सर्दियों में बरसात में बहुत तकलीफ होती है। उनको आइसोलेट करने का यही तरीका है कि नज़दीक के किसी हेल्थ सेंटर में उसको बच्चे को ले जाया जाए, वहाँ दाखिल कर दिया जाए। अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन ना हो तो, और थोड़े मोटे कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए एक रूम है 3 लोग रह रहे हैं, तो बच्चे को थोड़ा अलग करके सुला दिया और बाकी लोग अलग हो गए, इस तरह से मतलब थोड़ा सेग्रीगेशन करके मैनेज किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने कई बार ये बात कहा कि आजकल की माएं बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हैं, तो ये भी एक वजह है। तो ये थोड़ा सा एक दिलचस्प पहलू है, तो थोड़ा आप अगर हमारे सामीन को बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं।
0: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माएं चाहती हैं कि उनके बच्चे इतने खाएं कि फूल के बेलून हो जाए। और आप देखेंगे, आपका भी तजुर्बा होगा तलत जी, के बच्चे जो रास्ते में दिखते हैं या कम्युनिटी में दिखते हैं वो काफी मोटे मोटे बच्चे दिखते हैं, वो हेल्दी नहीं है, वो बच्चे डिजीज्ड हैं। कैसे डिजीज्ड हैं कि वो आउटसाइड जंक फूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, घर का खाना होममेड खाना पसंद नहीं करते हैं। और माएं क्या करती हैं कि बच्चे को अब छोड़ो, जिद मत करो, नहीं तो ये भी नहीं खाएगा। और इस चक्कर में माएं इतना मजबूर हो जाती हैं कि रेडीमेड फूड उनको खिलाती हैं, आइसक्रीम खिलाती हैं, फुचका खिलाती हैं, चाउमीन चिली चिकन वगैरह वगैरह, केक पेस्ट्री, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये सब हाइजीनिक नहीं है। कभी कभार आप खा सकते हैं, बट शुड नॉट बी यूजुअल फूड की हैसियत से नहीं लेना चाहिए इनको। और ओवर पैम्परिंग बच्चों को खराब कर रहा है, उनके जिस्म को कमजोर कर रहा है और बच्चे परेशान हो रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका कौन सा है, खसूसी तौर पर जैसे बस्तियां हुई या फिर रिहायशी इलाका जो होता है जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें रहती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कमर्शियल इलाका, तो सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका कौन सा है?
0: देखिए, मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो मेरे इलाके में बहुत सारी फैमिलीज है जो सड़कों पर रहती है, फुटपाथ पर रहती है, वो लोग बीमार नहीं पड़ते। फिर मैं ये कहूंगा कि इम्यूनिटी इज द बेस्ट डिफेंस इन द हेल्थ सिस्टम। इम्यूनिटी
1: जो हमने कोरोना के वक्त देखा है,
0: हाँ, इम्यूनिटी इतनी अच्छी चीज है कि किसी को भी, जैसे कि हम कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, दो हमारे बॉर्डर्स हैं, एक बॉर्डर पे 10 सिपाही है, दूसरे पे 50 है, तो ऑब्वियसली 10 वाला हार जाएगा, 50 वाला जीतेगा। यहां भी वही सिस्टम प्ले करता है। और जो फुटपाथ पे रहते हैं बच्चे, वो बरसात का पानी भी झेलते हैं, सूरज की गर्मी भी झेलते हैं और ठंड की ठंड भी झेलते हैं। उनका इम्यूनिटी इतना ज्यादा है कि बीमार बहुत कम पड़ते हैं। मैं बच्चों का कैंप भी करता हूँ अपने चैम्बर में, फ्री भी देख देता हूँ बच्चों को। तो मैंने जो कैलकुलेट किया, मेरा जो अपना तजुर्बा है कि द मोर यू आर एक्सपोज टू नेचर द मोर यू आर सेफ।
1: तो और जैसे कि अगर कमर्शियल या बड़ी बड़ी कसीर मंजिला इमारतों में देखा जाता है कि एसी का चलन बहुत ज्यादा रहता है, ये सर, तो ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है।
0: बिल्कुल कम करता है। देखिए, वो आर्टिफिशियल एयर है,

0: और वो एयर को सर्कुलेट कर रहा है बाहर, प्योरीफाई नहीं कर रहा है। वो एयर प्योरीफायर आजकल आ गया है, तो अब जितना लाइफ को आप लग्जरी बनाएंगे उतना लग्जरी होता जाएगा। बट इसी अभी एसी जो है नीड है हमारी, लग्जरी नहीं है। अब तो लग्जरी नहीं
1: बिल्कुल,
0: रहा
1: बिल्कुल।
0: गर्मी इतनी पड़ती है कि इंसान काम नहीं कर सकता है। और एक बारे में मैं सजेस्ट करूंगा कि एसी में जब आप रहें तो एसी को 24, 25, 26 पे रखें तो बेहतर है। और जब बाहर निकलें तो बाहर निकलने से 10 मिनट पहले एयर कंडीशन को बंद कर दें, यूज टू हो जाए एटमोसफेयर में, फिर बाहर निकलें
1: जी,
0: तो ये आपके सेहत के लिए बेहतर।
1: बिल्कुल सर। और एक चीज आपने कहा था कि इस बीमारी से बचने के लिए सबसे अहम चीज है वैक्सीन।
0: बिल्कुल।
1: तो वैक्सीन के बारे में हम जो हमारे पास डेटा आता है और हम अमूमन सुनते हैं, जैसे कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा कर्मी हैं, इनका कहना होता है कि बस्तियों में इस तरह के रिहायशी इलाकों में वैक्सीन के लिए उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, कि माए बच्चों को रेगुलर नहीं कराना चाहती और कभी कभी एक डोज भी मिस होने से वो पूरा जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो ये कहां तक सच है? और
0: देखिए, ये कभी था ये मामला, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बंगाल में जो देख रहा हूँ डोर टू डोर वैक्सीनेशन का गवर्नमेंट का प्रकल्प और इंतजाम हो गया है, और हमारे जो सेवक कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, वो डोर टू डोर बॉक्स लेके जाते हैं और टाइम से ही कोशिश करते हैं कि उनको समझा दें, बता दें और वैक्सीनेशन कर दें। अभी ऐसा कुछ खराब नहीं है हमारे बंगाल में, तो कम से कम बहुत ही अच्छा है।
1: लोग मतलब बेदार हो रहे हैं,
0: बेदार है, और गवर्नमेंट भी बहुत इन पर फोकस कर रही है, इनको अवेयरनेस बताया जा रहा है, प्रोग्राम बताया जा रहा है कि ये करने से ये फायदा है, और लोग सुन रहे हैं।
1: जहाँ तक सरकारी अस्पताल है वहाँ से तो सारे डेटाज आते हैं, उन्हें पता रहता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं तो नर्सिंग होम में, तो वहाँ से डेटा किस तरह गवर्नमेंट के पास आता है?
0: नहीं, क्या होता है कि अभी जो हमारा प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, डाटा सिस्टम एक ही है, बर्थ रजिस्ट्री एक है जो एक जगह पूरा कंपाइल होता है। हमारे यहाँ भी नर्सिंग होम में, कहीं भी हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, बर्थ रजिस्टर में वो फॉर्म एक आया है जिसमें फॉर्म को भरना पड़ता है, नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, फॉर्म फिलअप करके आप दे देते हैं, वो डाटा गवर्नमेंट के पास कॉरपोरेशन में या जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है जो भी, उसमें चला जाता है, इंडोर्स हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज जो बार बार सबके जहन में होगी और हमारे सामने भी सुनना चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं इस बीमारी को मजहबी या कुछ वहम इन चीजों से जोड़ दिया जाता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो ये बच्चा अभी इससे छेड़ो मत, इसे परेशान मत करो, कहीं ना कहीं कुछ वहम चलता है।
0: देखिए, हमारे यहाँ तो मल्टी रिलीजियस मल्टी लिंगुअल कंट्री है जिसमें हम लोग बहुत सारे रिलीजन्स को लेकर साथ चलते हैं। आपका कहना दुरुस्त है, तो बहुत सारे लोग इसको क्या वो क्या माता बोलते हैं, कुछ लोग कुछ
1: जी,
0: और बोलते
1: जी,
0: हैं
1: जी, मैंने कुछ वहम है।
0: मैं समझता हूँ कि देखिए, ये मल्टी रिलीजियस कंट्री है और रिलीजन पे डिस्कस करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। अपना अपना फेथ है, अपनी अपनी फीलिंग है, बट मैं फिर बार बार कहूंगा कि जहां पर बीमारी है उसको इलाज कराओ, आप पूजा करो, दुआ करो, सब करो, बट बीमारी का इलाज मस्ट है, वैक्सीनेशन प्रिवेंशन के लिए मस्ट है, हाइजीन प्रिवेंशन के लिए, बीमारी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। आप धर्म माने, धर्म का काम करें, कर्म करें, बट रिलीजन को बीमारी के साथ फोकस करके इतना ना कर दें कि बीमारी का इलाज नहीं हो, सिर्फ रिलीजन।

0: इनका काम
1: है। आपके पास तो जरूर इस तरह के कई केसेस आते हैं
0: लोग, मैं समझाता भी हूँ, मैं खुद भी काउंसलिंग करता हूँ, मैं देखिए खुद नमाज पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा मैं, मगर दुआ के साथ दवा चाहिए तुमको। एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और कहा कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरे लिए बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। आप सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ की और कहा कि ठीक है आप ऐसा करो कि मैंने दुआ कर दिया, आप तीब को दिखा लो, तीब माने डॉक्टर और हकीम के होते हैं। तो वो आदमी 5-7 दिन 10 दिनों के बाद फिर सरकार के पास आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि मेरा बच्चा इंतकाल कर गया है। तो आपने पूछा कि क्या तुमने तीब दिखाया था, तो कहा कि नहीं मैंने तीब नहीं दिखाया। तो बोले तुमने गलती की थी, मैंने तुमको कहा था कि मैं दुआ कर रहा हूँ, तीब दिखा लेना। तो जब एक इतने बड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और दूसरे धर्म के भी लोग हमारे जो ऋषि मुनि पंडित ज्ञानी गुनी हैं वो लोग भी कहते हैं, फादर्स भी कहते हैं कि मर्ज को मर्ज की तरह ट्रीट करो, धर्म से मत ट्रीट करो।
1: जी डॉक्टर साहब, हर बीमारी का कहीं ना कहीं मौसम बहुत बड़ा, वहाँ के आप हवा वहाँ का माहौल वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस बीमारी के बारे में ज़्यादातर हम सुनते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा देखते हैं।
0: बिल्कुल सही है,
1: और सर्द इलाकों में नहीं।
0: ट्रॉपिकल एरियाज में क्या है कि चेंज ऑफ सीजन जो होता है सडन होता है। अभी जैसे हम लोग सीजन झेल रहे हैं, अभी हम लोग आप लोग सब
1: जी
0: लोग,
1: जी
0: 2 दिन पहले बारिश हुई है कलकत्ते
1: में, हल्की सी ठनकी हो गई,
0: दिन भर गर्मी हो रही है, अभी आपके पास हम एसी में बैठे हैं, निकलेंगे बाहर एक्सपोजर होगा
1: जी।
0: तो ये सारा फैक्टर जो है ना प्ले करता है, और चेंज ऑफ वेदर की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो एयरबॉर्न उड़ते हैं हवा में और वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सही है कि चेंज ऑफ वेदर में प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: ओके, बहुत अच्छा लगा और हमें इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, पता चला। मुझे उम्मीद है कि हमारे सामईन आपकी इन मशवरात पर जरूर अमल करेंगे और जरूर फैजयाब होंगे।
0: डॉक्टर साहब, मैं भी अपनी तरफ से AIR कलकत्ता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस एक डॉक्टर को जिसका नाम डॉक्टर शकील अख्तर है आपसे बात करने का और हमारे लोगों को अपना छोटा मोटा पैगाम पहुंचाने का मौका दिया।
1: तो साहब अभी समाप्त फरमा रहे थे हिफ्ज़ाने सेहत के तहत डॉक्टर शकील अख्तर और तलत सलाउद्दीन के दरमियान खसूसी बातचीत। फिलहाल वक्त हो रहा है आगे बढ़ने का और सुनते हैं एक निहायत ही प्यारा सा नगमा। नाजिया हुसैन की आवाज में फिल्म का नाम कुर्बानी, कलाम इंदिवर और मौसीकी है बिद्दू की। दोस्तों, मोहब्बत करना तो एक जगह, लेकिन जब महबूब खुद ही खुलेआम इजहार मोहब्बत करे तो फिर शर्म हया एक जगह, नजर तो सिर्फ महबूब पर टिकी होती है।

जी हाँ दोस्तों, बात तो बनानी है लेकिन स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है कि आगे बढ़ने का, और सुनते हैं आज के प्रोग्राम का आखिरी नगमा। हमारा उनसे ताल्लुक भी मिसाले शम्स व कमर है, हमारा उनसे ताल्लुक भी मिसाले शम्स व कमर है, एक राबता मुसलसल एक फासला मुसलसल। सुनते हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद, कलाम अमिताभ भट्टाचार्य और मौसीकी है प्रीतम की।

दोस्तों अंजुमन ने वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे कुछ प्यारे नगमों के साथ, कुछ अनोखे वाकयात के साथ। तब तक के लिए आपकी दोस्त तलत सलाउद्दीन को इजाजत दे। अब कुछ ही देर में आप समाप्त फरमाएंगे वेस्टर्न प्रोग्राम, जहां साथ होंगी संयुक्ता नंदी।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 12:33 और इसी के साथ मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर हिंदी कार्यक्रम सुरभि। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा है से। दोस्तों आज है 25 अगस्त और आज से शुरू होता है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। ये सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाने का अवसर है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकती है। हम में से बहुत से लोग शायद नेत्रदान के बारे में सोचते तो हैं लेकिन मन में कोई सवाल भी होते हैं, जैसे क्या इससे शरीर को नुकसान होता है, क्या कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है और आखिर हमारी आंखें किसी दूसरे व्यक्ति के काम कैसे आती है। नेत्रदान में पूरी आंख किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाई जाती। आमतौर पर आंख के कॉर्निया यानी आंख के सामने की पारदर्शी परत को का प्रत्यारोपण किया जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दान किए गए स्वस्थ कॉर्निया से ऐसे व्यक्ति की दृष्टि लौटाने में मदद मिल सकती है जिसकी रोशनी कॉर्निया की बीमारी या क्षति के कारण चली गई। सबसे खूबसूरत बात यह है कि नेत्रदान का निर्णय हम अपने जीवन काल में ही ले सकते हैं। परिवार को भी अपनी इच्छा के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि मृत्यु के बाद परिवार की सहमति और समय पर सूचना देना इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। सोचिए जीवन में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, यादें, रिश्ते, हमारी बातें, लेकिन नेत्रदान हमें एक ऐसा अवसर देता है कि हमारे जाने के बाद भी किसी की दुनिया रोशन हो सकती है। इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर खुद जागरूक बनिए, अपने परिवार से बात कीजिए और नेत्रदान के बारे में सही जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए क्योंकि कभी कभी किसी को जिंदगी देने के लिए खुद की जिंदगी खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है और हमारी आंखें किसी और की दुनिया को फिर से रोशन कर सकती है। तो ये था दोस्तों नेत्रदान पखवाड़ा पर चर्चा है। आगे बढ़ते हुए हम सुन लेंगे एक खूबसूरत सा गाना लकी अली की आवाज में।

ऐसे खूबसूरत से गाने के बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं सुरभि में, और सुरभि के अगले पायदान पर हम आपको सुनाने वाले हैं पहल। और पहल में आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो चलिए पहल की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम पहल में। मैं हूं पापिया और आज फिर लेकर आई हूं स्वास्थ्य से जुड़ी एक जरूरी जानकारी जो शायद किसी परिवार के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। आज की हमारी चर्चा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी JSSK पर। दोस्तों, मां बनना किसी भी महिला के जीवन का एक बेहद खास अनुभव होता है। घर में बच्चे के आने की खबर मिलते ही तैयारियां शुरू हो जाती है। कोई बच्चे के कपड़े खरीदता है, कोई नाम सोचता है, तो कोई आने वाले नन्हे मेहमान के लिए छोटी छोटी चीजें जुटाने लगता है। लेकिन इन खुशियों के बीच एक सवाल परिवार के मन में जरूर होता है, प्रसव सुरक्षित कैसे होगा और अगर अचानक कोई परेशानी आ गई तो क्या होगा। और कई परिवारों के लिए इसके साथ एक और चिंता जुड़ी होती है, इलाज का खर्च। यही वजह है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2011 को की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं बिना आर्थिक बोझ के उपलब्ध कराना और बीमार नवजात तथा शिशुओं के लिए इलाज को भी परिवार के लिए आर्थिक रूप से आसान बनाना है।

एक्चुअली अब इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। अगर कोई गर्भवती महिला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव के लिए जाती है तो JSSK के तहत सामान्य प्रसव और जरूरत पड़ने पर सिजेरियन यानी सी सेक्शन से जुड़ी सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके साथ जरूरी दवाइयां और इलाज में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, आवश्यक जांच, चिकित्सकीय जरूरत होने पर ब्लड की सुविधा भी शामिल है। यानी अस्पताल पहुंचने के बाद परिवार को सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए कि इलाज का खर्च बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन JSSK की खासियत सिर्फ अस्पताल के अंदर मिलने वाली सुविधाओं तक सीमित नहीं है। मान लीजिए एक गर्भवती महिला किसी गांव में रहती है और अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। रात का समय है, परिवार घबराया हुआ है और सबसे बड़ा सवाल, अस्पताल तक पहुंचेंगे कैसे? ऐसे समय में ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। JSSK के तहत गर्भवती महिला को घर से स्वास्थ्य संस्थान तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट का प्रावधान है। अगर महिला को बेहतर इलाज के लिए एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान में भेजने की जरूरत पड़ती है तो रेफरल के दौरान ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी शामिल है और इलाज के बाद महिला को घर वापस पहुंचाने यानी कि ड्रॉप बैक की सुविधा का भी प्रावधान है। तो सोचिए, जिस परिवार को शायद सबसे ज्यादा जरूरत उस समय सिर्फ एक सुरक्षित वाहन की होती है, उसके लिए ये सुविधा कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। और एक और सुविधा है जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, अस्पताल में भर्ती महिला के लिए भोजन। जी हाँ, JSSK के तहत सामान्य प्रसव के मामले में 3 दिन और सी सेक्शन के मामले में 7 दिन तक निःशुल्क डाइट का प्रावधान है। यानी योजना का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि महिला का प्रसव अस्पताल में हो जाए, बल्कि अस्पताल में रहने के दौरान जरूरी सहायता भी उसे मिलती रहे। अब आते हैं कार्यक्रम के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, शिशु की सुरक्षा। बच्चों के जन्म के बाद परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन कभी कभी जन्म के बाद बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। उसे सांस लेने में परेशानी हो सकती है, वो दूध न पिए, संक्रमण हो सकता है या डॉक्टर को किसी दूसरी वजह से अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में परिवार को इलाज में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। JSSK के तहत बीमार शिशुओं के लिए भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क इलाज, जरूरी दवाइयां, जांच और जरूरत पड़ने पर ब्लड जैसी सुविधाओं का प्रावधान है। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जानकारी के अनुसार ये सुविधा बीमार शिशुओं को 1 वर्ष की आयु तक उपलब्ध है और अगर बच्चे को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाने की जरूरत पड़े तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी योजना का हिस्सा है। यानी माँ हो या बच्चा, दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी योजना की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे देश में आज भी कई परिवार

बार अस्पताल पहुंचने में देर कर देता है और स्वास्थ्य के मामले में देर कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए JSSK का एक बड़ा उद्देश्य यही है कि गर्भवती महिला को सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इलाज के दौरान होने वाले जेब खर्च को कम किया जा सके। अब यहाँ एक बात हमको भी समझनी होगी, किसी योजना का लाभ तभी मिलेगा जब हम उसके बारे में जानकारी होगी हमें। इसलिए अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी पहले से रखें। आशा कार्यकर्ता या स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क में रहें और ये भी पता करें कि आपके इलाके में JSSK की ट्रांसपोर्ट सुविधा कैसे प्राप्त की जा सकती है। प्रसव की तारीख आने का इंतजार करके आखिरी समय में तैयारी करने के बजाय पहले से तैयारी करना हमेशा से बेहतर होता है। गर्भावस्था के दौरान महिला की नियमित जांच करवाना, डॉक्टर की सलाह मानना, उसे पर्याप्त आराम देना, किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करना, ये सब परिवार की जिम्मेदारी है। इसी तरह से बच्चे के जन्म के बाद भी सावधानी बहुत जरूरी है। अगर नवजात बच्चा ठीक है, ठीक से दूध नहीं पी रहा, बहुत सुस्त है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, शरीर का तापमान असामान्य लग रहा है, दौड़े पड़ रहे हैं या फिर कोई गंभीर लक्षण दिखाई दे रहा है तो घर पर इंतजार करने के बजाय तुरंत स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करें, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी परेशानी बता नहीं सकते। उनकी छोटी सी तकलीफ भी कभी कभी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकती है। तो दोस्तों, आज की चर्चा को अगर बहुत आसान शब्दों में समेटे तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का संदेश यही है कि सुरक्षित मातृत्व और बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा किसी परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में JSSK के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव, जरूरी दवाइयां, जांच, ब्लड, भोजन और ट्रांसपोर्ट जैसी कई सुविधाओं के प्रावधान है। बीमार शिशुओं के लिए भी इलाज, दवाइयां, जांच और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लेकिन इसके साथ हमारी भी एक जिम्मेदारी है, जानकारी हासिल करना और उसे आगे पहुंचाना। अगर आपके पड़ोस में कोई गर्भवती महिला है, अगर किसी परिवार में नवजात बच्चा या कोई ऐसा परिवार है जिसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है तो उन्हें इन सुविधाओं के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि कई बार किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा साधन होना जरूरी नहीं होता। सही समय पर दी गई सही जानकारी भी बहुत बड़ी मदद बन सकती है। एक सुरक्षित माँ, एक स्वस्थ बच्चा और एक जागरूक परिवार, यही तो एक स्वस्थ समाज की शुरुआत है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के पहल में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी परेशानी को नजरअंदाज मत कीजिए और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सही जानकारी जरूर हासिल कीजिए। फिर मैं मिलूंगी किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। तो दोस्तों, ये थी पहल और पहल के अंतर्गत आज हमने बात की जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में। अब स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है 12:15 और सुरभि के अंतर्गत चलिए सुन लेते हैं अगला और आखिरी गीत हमारे कार्यक्रम का और सोनू निगम की आवाज में, और इस गीत के तुरंत बाद होगा अगला कार्यक्रम कंटिन्यू। मैं पापिया तब तक के लिए लेती हूँ आप सभी से विदा, बने रहिए साथ में, रहिए मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम।

0: Well, definitely we're going to celebrate with more music. But yes, for the next 10 minutes, you will be connected to Delhi for the news in Hindi and English. And thereafter, I'll be back with more music right here on the Sanjayita, right at 1:10. Stay tuned.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से यूपीआई के

0: साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के

0: बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
2: स्पिरिट ऑफ इंडियाज जर्नी।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: We want to create global स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्त धारा को विकसित भारत बनाने का

0: अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটারে অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে আজ শুনবেন মরুবেহাগ রাগে খেয়াল, শিল্পী সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তবলায় প্রশান্ত দে রায়।

ni sa ga ma pa ma ga de sa o na ja sa ga ma pa ma ga de sa ni sa pa ma

0: আকাশবাণী কলকাতা। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে, মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটারে অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। শুরু হল সঞ্চয়িতার দ্বিতীয় অধিবেশন। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 4:59 হয়ে 52 সেকেন্ড। একটু পরেই খবর শুনবেন।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিং। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुणा वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी यात्रा केवल लोगों को जोड़ने से परिभाषित नहीं होगी, बल्कि विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क सुनिश्चित करने से भी परिभाषित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के 43वें स्थापना दिवस पर देश के दूरसंचार परिवर्तन में सी डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश के में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ05, NJ50 और NJ100 शामिल हैं।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इनका इस्तेमाल सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन इंटरसेप्टर और छोटे मिसाइल सिस्टम में किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाएंगे। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। National Security Advisor Ajit Doval today held special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on the India-China boundary issue and improvement of relations between the two countries. Prior to the talks, Doval called on Chinese Vice President Hang Xiang. In a social media post, the Indian Embassy said the two leaders discussed ways to strengthen peace and tranquility in the border areas and further improve bilateral ties across economic, political and multilateral fora. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. The Finance Ministry said the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today held discussions with executives from Japan's leading financial institutions to boost long-term investment and strengthen India-Japan economic ties. Representatives from Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG, Development Bank of Japan Mihuro, Morgan Stanley Nomura and Nippon Life discussed investment opportunities in India. Mr. Goyal highlighted the strength and resilience of the Indian economy, noting that India recorded 7.7% growth last year despite global uncertainties and is working toward becoming a $30 trillion economy by 2047. The central government has empowered the West Bengal government to conduct hearings under the Citizenship Amendment Act or CAA and issue citizenship certificates to eligible applicants. Showing a gazette notification issued by the Union Home Ministry, Chief Minister Shubhendu Adhikari told reporters at state headquarters yesterday that 23,000 people have so far been recognized as eligible and issued citizenship certificates out of around 2,30,000 applicants. He said the remaining applicants would be processed.

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर शुरू होता है कार्यक्रम उर्वशी। उर्वशी के अंतर्गत एक ही फिल्म में आज आप सुनेंगे फिल्म हकीकत के कुछ नगमे।

0: अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म हकीकत के इस गीत को अभी भी आपने सुना। कैफी आज़मी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त

देश की सीमा पर जब एक जवान अपने हाथों में तिरंगा लेकर मातृभूमि की रक्षा के लिए निकलता है, तब उसके पीछे एक परिवार भी खड़ा होता है। माता, पिता, बच्चे और सबसे बढ़कर उसकी पत्नी। वो पत्नी अपने पति के लौटने की उम्मीद में हर दिन, हर शाम दरवाजे की ओर देखती है। लेकिन कभी कभी देश की रक्षा करते हुए वो वीर जवान शहीद हो जाता है। उस दिन केवल एक सैनिक नहीं जाता, बल्कि किसी की दुनिया उजड़ जाती है। किसी महिला का सुहाग छिन जाता है और उसके माथे का सिंदूर देश की मिट्टी के नाम हो जाता है।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक बार फिर से आपने सुना फिल्म हकीकत के इस गीत को। कैफी आज़मी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफ़ी, भूपिंदर, तलत महमूद, मन्ना दे और साथियों की आवाज़ों में फिल्म हकीकत के इस गीत को अभी भी आपने सुना। कैफी आज़मी के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा था मदन मोहन ने। जी हाँ दोस्तों, इन वीरांगनाओं का दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं। जिस हाथ में कभी पति का हाथ था, उसी हाथ में एक दिन तिरंगा आ जाता है। जिस माथे पर पति के नाम का सिंदूर था, वहां देश के लिए गर्व और आंखों में अनगिनत आंसू रह जाते हैं। फिर भी ये महिलाएं टूटती नहीं हैं। वे अपने बच्चों को बताती हैं कि उनके पिता केवल एक पिता नहीं थे, बल्कि पूरे देश के वीर सपूत थे। हमें याद रखना चाहिए कि सीमा पर लड़ने वाला हर सैनिक अकेला नहीं लड़ता। इन वीरांगनाओं के माथे से मिटा सिंदूर केवल एक व्यक्तिगत

कार्यक्रम उर्वशी के अंतर्गत आप अभी सुन रहे थे एक ही फिल्म से, फिल्म हकीकत के कुछ नगमे। और चलिए चलते चलते ये तराना आपके

0: Special Superintendent of Police CID West Bengal also informs that Muhammad Obaidul Hassan, aged about 33 years, height 5 feet 8 inches, color skin dark, mother tongue Bengali, is missing since 16th of August 2016 from Rajabagan Police Station area, Kolkata. Information regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 700027. And that is the end of the announcements regarding the lost person. And now the program highlight for this evening. At 6:10 p.m. from our station, you will listen to the Hindi program. At 7:10, listen to Nojrul Giti by Porimal Bhattacharya, followed by our Hindi Karikram Darpan at 7:30 p.m. Film music at 8 o'clock. Bengali version of the program Spotlight at 8:30 p.m. From our station at 10:30, you will listen to the Western music program, and at 11:10, you will listen to Hindi film songs. And now, please stand by for the news to be relayed from Delhi in a short while from now.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath main Vishal Sharma. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ05, NJ50 और NJ100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है।

0: students with agriculture degree programs. Mr. Chauhan was speaking after inaugurating a conference of vice chancellors and director of ICAR institutes in New Delhi. Secretary, Department of Consumer Affairs, Nidhi Khare, has said that Kanda Express is bringing about 800 metric tons of onions to Delhi. In a social media post, the secretary said the onion will be sold at 35 rupees per kilogram at NAFED, NCCF and Kendriya Bhandar stores. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has said booth-level officers are the foundation of India's democracy. The Chief Election Commissioner, who is on a two-day visit to Uttar Pradesh, attended an interaction program with around 500 booth-level officers in Lucknow today. Benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. The Sensex surged 287 points to close at 77,656. The Nifty advanced 115 points to settle at 24,334. In men's cricket, host Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of the Colombo Test. Sri Lanka are trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal's centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के संजयिता चैनल पर शुरू होता है कार्यक्रम वार्ता। आज की वार्ता का विषय है नेत्रदान महादान से जीवन दान तक। ये शब्द या ये वाक्य केवल एक भावनात्मक संदेश नहीं बल्कि मानवता की एक महान सेवा है। मृत्यु के बाद भी हमारी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की दुनिया रोशन कर सकती है जो दृष्टिहीनता के अंधकार में जीवन जी रहा है। नेत्रदान के माध्यम से किसी जरूरतमंद को दृष्टि का उपहार मिल सकता है और उसके जीवन में नई उम्मीद, आत्मविश्वास और खुशियां लौट सकती है। नेत्रदान का अर्थ केवल आंखें दान करना नहीं बल्कि किसी के जीवन में उजाला बांटना है। एक व्यक्ति के नेत्रदान से एक से अधिक जरूरतमंदों को दृष्टि का लाभ मिल सकता है। इसलिए हमें समाज में नेत्रदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर कर लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमारा जीवन समाप्त हो सकता है लेकिन हमारी आंखों से किसी और की दुनिया हमेशा के लिए रोशन हो सकती है। नेत्रदान हमें करना चाहिए, अंधकार हमें मिटाना चाहिए, रोशनी हमें फैलानी चाहिए। नेत्रदान महादान है और महादान से जीवन दान तक की यह यात्रा मानवता के लिए है।

जी हाँ, नेत्रदान मृत्यु के बाद भी जीवन को सार्थक बनाने का अवसर है। हमारी आंखें किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में रोशनी और आशा ला सकती है। यह केवल दान नहीं बल्कि मानवता, करुणा और संवेदनशीलता का प्रतीक है। दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए दुनिया को देख पाना किसी चमत्कार से कम नहीं। नेत्रदान उस चमत्कार का माध्यम बन सकता है। समाज में नेत्रदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं। सही जानकारी और जागरूकता से इन भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है। नेत्रदान के लिए व्यक्ति की इच्छा और परिवार की सहमति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पहले से परिवार को अपनी इच्छा बताना भी जरूरी है। नेत्रदान का संदेश केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि गांवों, कस्बों और छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंचनी चाहिए। किसी जरूरतमंद की आंखों में दुनिया को देखने की खुशी लौटाना वास्तव में मानव जीवन को एक नई दिशा

आंखें बंद होगी हमारी, पर किसी की दुनिया रोशन होगी। जीवन भले ही समाप्त हो जाए, पर मानवता की रोशनी कायम रहेगी। रक्तदान से जीवन बचता है और नेत्रदान से जीवन में रोशनी आती है। मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन का उजाला बने रहना एक खुशी की बात है। इसलिए आइए हम सब मिलकर

0: नेत्रदान एक ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी याद रहता है। नेत्रदान मानवता की ऐसी सेवा है जिसका लाभ किसी व्यक्ति को हमारे जीवन काल के बाद मिलता है। हम दुनिया से विदा हो जाते हैं, लेकिन हमारी आंखों की रोशनी किसी दूसरे इंसान के जीवन में नई सुबह ला सकती है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए दुनिया को देख पाना केवल आंखों की रोशनी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, शिक्षा, रोजगार और सपनों को पूरा करने का अवसर भी है। इसलिए नेत्रदान को केवल चिकित्सा प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखने की जरूरत है। हमें अपने परिवार और आसपास के लोगों को नेत्रदान के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीआई व्यवस्थां भारतस्य डिजिटल परिशोधन यात्रायाः प्रमुख परिवर्तन बिंदुः वर्तते इति प्राख्यापयत्। सहैव एतस्यै एकादश देशेषु परिचालनेन सह वैश्विक मान्यता च लब्धा। केंद्र सर्वकारेण पश्चिम बंगाल सर्वकारः योग्यावेदकेभ्यः नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणाय CAA इत्यस्यान्तर्गतम् अधिकृतः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः अद्य बीजिंग नगरे चीन विदेश मंत्रिणा वांग यी इत्यमुना सह भारत चीन सीमा विषये विशेष प्रतिनिधि वार्तां करिष्यति। संयुक्तराज्येन सर्वेभ्यः H1B सीमा अंतर्गत आवेदनेभ्यः अतिरिक्तस्य 65,200,000 परिमितस्य शुल्कस्य प्रस्तावः कृतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। यूपीआई इत्यनेन डिजिटल परिशोधन व्यवस्थायां परिवर्तनेन सह भारते 10 वर्षाणि सम्पूरितानि। अद्य एषा व्यवस्था भारतस्य डिजिटल परिशोधन व्यवस्थायाः मेरुदण्डरूपेण उद्भूतास्ति। 16,000 वर्षे प्रारब्धायाः अस्याः व्यवस्थायाः व्यवहारसंख्यायां प्रायः 13,000 वृद्धिः सञ्जाता। अत्रावसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीआई सेवा प्रणालीं श्लाघमानः सामाजिक संचार पटले अलिखत् यत् यूपीआई भारतस्य डिजिटल परिशोधन यात्रायां कश्चन महत्वपूर्णः परिवर्तनात्मकश्च बिंदुः सिद्धः। वित्तमंत्रालयानुसारं 16-17 च आर्थिकवर्षे यत्र केवलं 1.78 कोटि व्यवहाराः अभवन्, तत्रैव 2000 पञ्चविंशे 26 च वर्षे एषा संख्या समेध्य 62,100,000 व्यवहारात्मिका अजायत। केंद्र सर्वकारेण पश्चिम बंगाल सर्वकारः नागरिकता संशोधन अधिनियमस्यान्तर्गतं वादश्रवणाय योग्यावेदकेभ्यः नागरिकता प्रमाणपत्राणि दातुं च अधिकारो दत्तः। केंद्रीय गृह मंत्रालयेन अस्मिन् संदर्भे एका राजपत्र अधिसूचना प्रकाशिता। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी वार्ताहरान असूचयत् यत् प्रायः 30,000+ आवेदकेषु एतावता 23,000 जनाः योग्याः घोषिताः, तेभ्यः नागरिकता प्रमाणपत्राणि च वितरितानि। सः अवदत् यत् अवशिष्ट आवेदनानाम् अपि शीघ्रतया कार्याचरणं भविष्यति। सम्बन्ध मण्डलाधिकारिणां माध्यमेन च प्रमाणपत्राणि प्रदास्यन्ते। मुख्यमंत्रिणा धार्मिक उत्पीडन कारणात् बांग्लादेशात् समागताः जनाः CAA इत्यस्यान्तर्गतं नागरिकतायै आवेदनं

विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन इत्यस्मिन् सप्त पुरस्कारः विजिताः। विभागस्य पत्रिकाः, पुस्तकानि, हिंदी आंग्ल उर्दू भाषाणां संदर्भ प्रकाशनानि च विभिन्नेषु वर्गेषु स्वीकृतानि सन्ति। महानिदेशकः प्रकाशन विभागः डॉक्टर धीरज काकड़िया इत्येषः अवदत्।

0: क्षेत्रे महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहन्ति। संयुक्तराज्यस्य गृहसुरक्षा विभागेन सर्वेभ्यः H1B वीजा आवेदकेभ्यः वर्तमान शुल्कम् अतिरिच्य 65+ $3,100,000 परिमितस्य नूतन शुल्कस्य प्रस्तावः कृतः। गृहसुरक्षा विभागेन प्रकाशितायाः विज्ञप्तेः अनुसारम् इदं प्रस्तावित शुल्कम् आवेदन समर्पणकाले देयं भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर शुरू होता है कार्यक्रम गुलगुलशन। इसके अंतर्गत हम सुनेंगे कुछ नॉन फिल्मी तराने।

गुलगुलशन कार्यक्रम के अंतर्गत इस पहले तराने को आपने सुना चंदन दास की आवाज में। नसीम रिफत के लिखे इस नगमे को कंपोज किया था चंदन दास ने। आइए सुनते हैं अगली पेशकश।

सहर से शाम तक उसका इंतजार करें। चंदन दास की आवाज में इस गीत को अभी अभी आपने सुना। रामल सहगल के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था गायक कलाकार चंदन दास ने। मीडियम में 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलगुलशन के अंतर्गत कुछ नॉन फिल्मी तराने। चलते चलते ये तराना आपके लिए।

0: पत्थर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NG-5, NG-50 और NG-100 शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर प्रस्तुत है कार्यक्रम दर्पण। दर्पण के अंतर्गत एक नजर में आज हम बातें करेंगे नेशनल आई डोनेशन फॉर साइट के ऊपर, पर सबसे पहले ये तराना आपके लिए।

इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक आवश्यक सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050, 0332212612 तथा 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत, पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेब

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण। इसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं नेशनल आई डोनेशन फॉर साइट के ऊपर। नेत्रदान एक ऐसा महान कार्य है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी आंखों के कॉर्निया का उपयोग करके दृष्टिहीन व्यक्ति को देखने की क्षमता मिल सकती है, इसलिए नेत्रदान को महादान भी कहा जाता है। नेत्रदान से किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में रोशनी लौटाई जा सकती है। मृत्यु के बाद आंखें दान की जाती है, जीवित रहते आंखें निकालकर दान नहीं की जाती। सामान्यतः मृत्यु के बाद जल्द से जल्द नेत्रदान की प्रक्रिया शुरू करना महत्वपूर्ण होता है। नेत्रदान के लिए पारिवारिक सहमति और अधिकृत नेत्र बैंक चिकित्सा संस्था की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। नेत्रदान केवल दृष्टि देने का माध्यम नहीं बल्कि मानवता, करुणा और सेवा का भी प्रतीक है।

और दर्पण के अंतर्गत अब शुरू होता है फिर छिड़ी बात, नजर से नजारे तक। नजर सिर्फ देखने का नाम नहीं बल्कि नजरें तो भावनाओं की भाषा भी होती है। कभी एक नजर प्यार जता देती है, कभी अपनापन, कभी दर्द और कभी बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाती है। नजर से नजारे तक का सफर दरअसल इंसान से इंसान तक जुड़ने का एक सफर है। जब दो नजरें मिलती हैं तो कई बार शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। एक सच्ची नजर विश्वास देती है, हौसला देती है और रिश्तों में अपनापन भर देता है।

नजर से नजारे तक एक रोशनी का सफर है। नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन में उजाले का असर है। आपकी आंखों से देखे गए ये नजारे किसी और की आंखों में फिर से बस सकते हैं। नजर आपकी हो लेकिन नजारे किसी और के जीवन में लौट आए, यही नेत्रदान की खूबसूरती है। एक संकल्प ऐसा भी हो जो जीवन के बाद भी किसी की आंखों में रोशनी बनकर रहे। नजर से नजारे तक, आंखों से उजाले तक, नेत्रदान मानवता का सबसे सुंदर संदेश है। खुद की नजर थम जाए तो भी किसी और की आंखों में दुनिया चलती रहे, यही नेत्रदान है।

लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना फिल्म घर के इस गीत को। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था संगीतकार राहुल देव बर्मन ने। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर आप सुन रहे थे प्रोग्राम दर्पण, और चलते चलते आपके लिए छोड़े जा रहा हूं ये तराना।

0: সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে এখন শুনবেন সমাচার সন্ধ্যা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে বিশাল শর্মা। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू

0: उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: उम्मीद 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका

0: लक्ष्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय एमएसएमईज और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
2: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
3: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का 1 दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defense Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling upon the countrymen to share their UPI experience, the Prime Minister stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. Our correspondent reports that by bridging the digital divide, advancing financial inclusion and expanding access to digital financial services, UPI has empowered individuals and communities across the country while driving broad-based economic participation.
6: Today, one out of every two real-time digital payment transactions globally happens in India. As of 2025, UPI accounts for nearly 49% of the world's real-time payment transaction volume. Last month, over 23 billion transactions were recorded through UPI across the country. UPI has emerged as the backbone of India's digital payment ecosystem and a critical driver of financial inclusion. The unprecedented scale achieved by UPI have also received global recognition. UPI is now operational across 11 countries, including France, Singapore, UAE, Sri Lanka, Bhutan, and Mauritius. Talking to Akashvani News, a Delhi-based shopkeeper, Yogesh, said that UPI has made payments convenient and hassle-free.
7: I have been using UPI for the last 10 years, and ever since I started using it, I have never faced any problem with change or loose cash. The biggest advantage is that whether a person has money in their wallet or not, they always have UPI on their mobile. So this is a great benefit.
6: A resident from Bihar, Sanu Bharti, said,
8: UPI has enabled people across the country to easily transfer money digitally, either to their bank accounts or directly to another person. With the help of UPI, even ordinary people, vegetable vendors and street vendors can now make and receive payment easily.
6: In just a decade, UPI has transformed the scale of digital payments in the country, making transactions faster, simpler and more accessible. With Dipendra and Rishu, Anupam Mish, Akashwani News, Delhi.
5: In Maharashtra, Deepti Sharma, a homemaker from Mumbai, said UPI has made everyday payments quick and convenient.
9: I like UPI payments for all kinds of transactions because it's instant. It doesn't have any hidden fees. And the best part of it, that it is not, besides being safe and secure, it is very easy and user-friendly. You just need your phone and you're sorted.
5: Shailesh Rambhia, who runs a retail shop in South Mumbai, praised UPI for transforming the way businesses operate.
10: UPI is a great thing. Earlier, customer had a problem. They didn't have cash. We didn't have change. Now, money is directly transferred to the bank. So, the problem of depositing cash in the bank is solved.
5: Defense Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to the country's private defense industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defense ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. More from our

0: 만탄. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आनंद शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: आनंद जी। अगर हम सूखे की बात करते हैं तो इसे हर बार की आने वाली आपदा को मानकर राहत देने के बजाय एक ऐसे जोखिम के रूप में देखें जिसके पहले से तैयारी की जा सकती है, तो हमारी रणनीति में किस तरह से बदलाव आना आवश्यक है और भारत इस सोच को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है?
2: जितने भी हमारे

0: जिसे कहते हैं जोखिम, चाहे वो बाढ़ हो, अत्यधिक बारिश हो या फिर कम बारिश, सूखा। तो ये सूखा एक तरह का जोखिम है और हम ये देखें तो ये अक्सर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में मॉनसून सीजन में देखने को मिलता है, या सूखा हो या फिर एक लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी जब कभी लंबे समय से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बारिश ना हो तो वो उस फॉर्म में देखने को मिलता है। और यदि उसकी तैयारी हो तो हम उसको झेल सकते हैं। तो इसीलिए जो है ओवर द ईयर्स तैयारी ये की गई है कि हम जो है, पहले होता क्या था कि वर्षा की फोरकास्ट शायद अच्छी नहीं थी या फिर किसान को पता नहीं चलता था और पता चला सूखा हुआ आया और उनकी फसल खराब हो गई। पर अब ऐसा नहीं है, अब क्या एक पूरा तंत्र बना हुआ है, रेनफॉल की मॉनिटरिंग हो रही है और समय समय में उसका पूर्वानुमान दिया जा रहा है और पूर्वानुमान भी लगा है कि जैसे कि इस बार एलनीनो है तो मॉनसून की वर्षा सामान्य से कम होगी 10%, जैसा मौसम विभाग ने कह दिया। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मालूम है कि वर्षा कम होने वाली है इस समय और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा डिलेड है, देर से ऑनसेट होगा मॉनसून में, तो वहां पे किस तरह की फसल लगेगी, किस तरह की तैयारी होगी। तो यदि आपकी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस फोकस जो है, जो हमारा नया सिस्टम उसमें प्रिपेयर्डनेस पे फोकस है पहला, दूसरा फोकस है न्यूनीकरण पे, मिटिगेशन पे, कोई भी जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना, उसको कम करना, और तीसरा है आपका अर्ली वार्निंग तो है ही प्रिपेयर्डनेस में, और साथ में सिस्टम को रेजिलिएंट बनाना है। और इसमें हमारा जो इंडिया है उसमें हमने खासकर सूखे के ऊपर ड्राउट मैनुअल बनी है, बहुत अच्छी मैनुअल, और एक SOP बनी है किस तरह से कि जैसे ही मॉनसून शुरू होता है तो किन पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना है, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है जो मिनिस्ट्री में बना हुआ है जहां के सारे एक्सपर्ट मिलते हैं और स्टेट के ऑफिशियल्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहते हैं, तो उनको हर हफ्ते बताया जाता है कि भी बारिश अब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उससे तैयारी रहती है और ये तैयारी जो है हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं।
1: आनंद जी, आज सूखे का जो असर है सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा पर उसका असर पड़ता है, खेती, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, आपने भी वो बात कही है, तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सूखा दुनिया के सामने है, सिर्फ हमारी बात नहीं पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी विकास चुनौती बन सकता है या बन चुका है?
0: देखिए, सूखा तो हर समय से हमारे लिए चैलेंज रहा है, पर हमने उस चुनौती को काफी हद तक टैकल कर लिया है, यानी कि हमने इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया है, हालांकि और इरिगेशन जो हमारे को यदि हम सुधार कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर किसान जो है हमारे जो सिंचाई पे निर्भर है, सिंचाई है उनके पास, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इवन राजस्थान का कुछ हिस्सा, जब से इरिगेशन उनके पास है तो बारिश कम भी हो जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं वर्षा आधारित खेती करते हैं, जहाँ पे रेनफॉल एग्रीकल्चर होता है, वहां पे सरकारों को इरिगेशन पहुंचाने की जरूरत है एक, दूसरा वहां पर किस तरह की फसलें लगाए जाएं, क्रॉपिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेट, और तीसरा जो है वहां पर लाइफ सेविंग इरिगेशन। जैसे कि आप देखेंगे सदर्न इंडिया में पहले पॉन्ड इरिगेशन बड़ा कॉमन था, हर जगह तरह तरह के पॉन्ड होते थे, तो हमारे एक सिस्टम था कि कैसे तालाब बनाए जाते थे और उनको रखरखाव किया जाता था और उनसे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और खेती के लिए भी पानी लिया जाता था। तो आज पॉन्ड्स को रिवाइव करने की जरूरत है, उन नदियों को रिवाइव करने, तो जो हमारी पुरानी नदी है उनको रिस्टोर करना है, तालाबों को रिस्टोर करना है। तो ये यदि हम सब चीजें करते हैं और एग्रो क्लाइमेट आधारित खेती करते हैं और समय समय पे जो मौसम विभाग मौसम आधारित कृषि सलाह देता है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, तो ये हम सारी चीजों को चुनौती रहेगी, मगर हम टैकल कर रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और अच्छे से कर रहे हैं, और जैसे जैसे तकनीक और बढ़ती जाएगी हम और अच्छा करेंगे।
1: आनंद जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये है कि अब हमारा लक्ष्य राहत के बाद प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी और रोकथाम होना चाहिए, तो आपके हिसाब से हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो इस बदलाव को जमीनी स्तर पर लागू करना कितना आवश्यक है, क्या क्या इसके लिए हमें चीजें चाहिए और कैसे कोशिश की जाती है, और इसमें भी अगर कोई चुनौती है तो कैसी है?
0: देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैंने भी उनके पढ़ रहा था स्पीच का, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसमें। सही सीधी सी बात यह है कि देखिए, आपके पास तैयारी अच्छी है तो सबसे बढ़िया बात है। पहले क्या होता था, रिलीफ पे जोर होता था, रिएक्शन करते थे, रिएक्टिव था, अब हम हो गए प्रोएक्टिव, यानी कि पूरा फोकस है प्रिपेयर्डनेस पे। प्रिपेयर्डनेस वो मौसम विभाग से चालू हो गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पता है कौन से बीज लगाने हैं, तो जब सारी तैयारी आपकी है, आपने समय समय ये भी बता दिया कि भी अगले 15 दिन बारिश नहीं होने वाली, किसान को अब पता है कि मुझे क्या करना है, सिंचाई है उसके पास तो वो सिंचाई करेगा, और सिंचाई नहीं तो क्या करेगा, मल्चिंग करेगा, जो नमी बची है सॉइल उसको बचाएगा अपने आप को, और प्लस इसलिए भी कौन सी लगाएगा जो कि ड्राउट रेजिलिएंट है। तो हमारे यहाँ पे निकरा एक प्रोजेक्ट है ICR के अंदर, जिसके तहत में इस तरह की ड्राउट रेजिस्टेंट फसलें तैयार की गई हैं, तो वो तरह की वैरायटी किसानों उन क्षेत्रों में जो कि वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उनको वो वाली फसलें और वैरायटीज लगानी है। साथ साथ में पॉन्ड इरिगेशन है, तो जहां जहां सरकारों को लगता है कि यहां पॉन्ड्स थे, आप टोपो शीट से देखिए, जहां भर दिए मिट्टी से तो खुलवाइए, और यदि है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और इरिगेशन यदि कैनाल्स आप बनवा सकते हैं तो वो बनाइए, ये सब करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, और जो मौसम विभाग जो आपको समय समय पर वार्निंग दे रहा है वो और सुदृढ़ होता जा रहा है, तो ये सब चीजें

0: तो होंगे। अब ये हो गई, मगर कहीं पर ऐसा भी होता है मौसम तो खराब होगा
1: जी।
0: ऐसा नहीं है कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा ही ठीक रहेगा, तो वो खराब होगा तो ऐसे में क्या होगा, किसान की फसल खराब हो सकती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके लिए। ये सब हम करेंगे, अर्ली वार्निंग भी है, एश्योर्ड इरिगेशन भी है, अच्छी वैरायटीज है, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब है, और अच्छा प्राइस मिल रहा है उनको, सही फर्टिलाइजर, सही पेस्टिसाइड, सब चीजें मिलती है जो कि किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या जरूरत है, गुड गवर्नेंस की।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें गवर्नेंस बढ़ाना होगा।
1: आनंद जी, अगर हमें लंबे समय तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें जंगलों को बचाना होगा, जल ग्रहण क्षेत्रों को बचाना होगा और भूजल स्रोतों को भी बचाना होगा, यानी कि नए जल स्रोत बनाना भी आवश्यक और साथ ही पुराने प्राकृतिक जल तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण। और खासकर हमारे देश में तो नदियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक दौर कहते हैं कि ऐसा भी रहा है जब हर गाँव में तालाब वगैरह भी हुआ करते। तो आपको लगता है कि पुराने तालाब, झीलें और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जो हमारे पास रहे हैं उनका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हमारे लिए काफी प्रभावी समाधान हो सकते हैं समस्याओं के लिए?
0: बिल्कुल, मैंने एक स्टडी भी की थी रिसर्च, यदि आप उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ कटेंगे तो दिल्ली में ज्यादा फ्लड आएगा, यमुना में। सिमिलरली जम्मू कश्मीर ऊंचे पहाड़ों में आप कहते हैं पेड़ काटोगे तो श्रीनगर में फ्लड आएगा। तो ये जो फ्लड्स आपके हैं कैचमेंट एरिया के अंदर, आपके जंगल अच्छे हैं सुनिश्चित, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो आपको फ्लड रोकेंगे आपका आना, दूसरा जो सॉयल इरोजन होता है उसको बचाएंगे, और तीसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। तो इसलिए हमें जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं उसमें जंगलों को बचाना है, बल्कि और बढ़ावा देना है। और जैसे आपने कहा कि हमारी नदियां जो हैं उनको हमारे यहाँ तो वर्शिप किया जाता है, चाहे वो गंगा हो, यमुना, सभी नदियों को, मगर एक तरफ तो हम वहां उनको वर्शिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस गंद भी उसमें डाल रहे हैं। तो गंद डालना बंद करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज नदियों को अपने आप को साफ करना आता है। तो यदि वो करते हैं, उसमें जो एनक्रोचमेंट है नदियों के अंदर उसको हटा देते हैं, और जो तालाब है हमारे, आप देख लीजिए बेंगलोर में एक समय में 1700 तालाब होते थे, दिल्ली में मेरा ख्याल 900 तालाब होते थे, मगर आप जाएंगे तो वो तालाब नहीं दिखेंगे आपको। तो वो तालाब आप टोपो शूट से ढूंढिए कहाँ कहाँ थे तालाब, और मुझे लग रहा है कहीं शहरों में ये शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी मैं सुन रहा था, तो उन तालाबों को खोज रहे हैं और उनको जो यदि खराब हो चुके हैं तो उनको रिवाइव कर रहे हैं। तो ये सब रिवाइव करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा, तो आपके तालाब से पानी भी मिल जाएगा आपको, जब खेती के लिए भी मिलेगा आपको, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। तो ये सब करने की जरूरत है बिल्कुल। और डेफिनेटली इसके साथ साथ जैसे मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो वो भी एक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और ये सब प्रयास जो है यदि हम उसको सही ढंग से और सही मंशा से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गो ए लॉन्ग वे। हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वाटर सिक्योरिटी होगी तो ही फूड सिक्योरिटी होगी आपकी, और पेड़ पौधे और वो भी बचेंगे, अन्य जानवर, तो बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी आपकी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है। यदि हमें वाटर सिक्योरिटी को बचा लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी को भी हम बचा लेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी दुरुस्त कर लेंगे, और हमारे खासकर बायोडाइवर्सिटी को भी बचा लेंगे।
1: आनंद जी, सरकार की ये सोच रही है कि सूखे की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, और सरकार की योजनाओं में हम ये देखते भी हैं कि स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी को महत्व दिया जाता है। एक तरफ जहां सरकार जल संरक्षण को महत्व दे रही है, वनीकरण को बढ़ावा दे रही है, भूजल रिचार्ज पर भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी वाटर सप्लाई या फिर रोजगार जैसी राहत भी इसमें शामिल हो जाती है, कई सारी चीजें हैं, तो इनका संतुलन अगर बना करके हम देखें तो क्या लगता है कैसे परिस्थितियां बदल सकती हैं?
0: नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये ध्यान रखिए कि चाहे हम किसी गांव में जा रहे हैं या पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं, तो लोकल लोग जो हैं उनको तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है। और वो पेड़ बचे हैं तो पहाड़ बचे हैं, यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो पहाड़ नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हमेशा ही जरूरी है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको तो कम्युनिटी को सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी उनकी। और यदि हम ये कर पाते हैं तो नेचुरली हम काफी हद तक बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, उसके साथ साथ ऐसी परिस्थितियां हमेशा आती है नेचर में, जब कभी कभी बारिश कम हो जाएगी, जब नेचुरली सूखा पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, आपका फॉडर की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में उस समय सरकारों को तैयार रहना है, चाहे आपको टैंकर से पानी प्रोवाइड करना है, जानवरों के लिए फॉडर उपलब्ध कराना है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर हाँ, ध्यान रखना है जैसे कि फॉरेस्ट है, पहले जब तक आम जनता का, वहां के जो किसान लोग थे या जंगल के आसपास रहते, उनको एक्सेस थी जंगल में जाने के लिए, तो उनको फॉडर की कभी कमी नहीं रहती थी। बाद में किस तरह के कुछ नियम ऐसे आए कि उनको जंगलों से दूर रख दिया गया, फिर बाद में फिर पहल हुई ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नहीं आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, तो उनको जरूर इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, जिससे कि उनको घास, फोडर वगैरह ये मिलता रहे, जिससे कि वो अपने जानवर भी ठीक रख सके। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फसल तो आपकी खराब हो गई, मगर यदि आपके पास जानवर है, उसको फोडर मिल रहा है, तो आपको चलो दूध दही मिल जाएगा, उससे आप सर्वाइव तो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: आनंद जी, सूखे का संकट किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं, ऐसे में भारत जिस तरह से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करने की बात कर कर रहा है, तो इससे एक मजबूत वैश्विक ड्रॉट रेजिलियंस नेटवर्क बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, आपके सामने एग्जांपल है कि इस बार जो एल नीनो फिनोमेना है, अप्रैल के आसपास ही बोल दिया गया था कि भी एल नीनो इस बार आने वाला है।

0: हो सकता है कि सुपर एल नीनो हो, और इसकी जो मॉनिटरिंग है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। तो वो जो मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे पास भी रिसर्च का जो डेटा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हमारी भी तैयारी ऐसी है। और खासकर जो ये WMO जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलजुल के काम करती है, और उनकी जो रिसर्च निकलती है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलती है, या कोई अर्ली वार्निंग है, वो सारे देशों में शेयर की जाती है। और जैसा कि पता, एल नीनो हमें ही नहीं प्रभावित कर रहा है, वो पेरू को भी प्रभावित कर रहा है, वहां पे ज्यादा इस समय इफेक्ट दिख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित कर रहा है, वो इंडोनेशिया को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए ये एक तंत्र बनाया गया है कि ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिया जाए, जो WMO इस तरह से बना रहा है और वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, जिससे कि हर कंट्री के पास यदि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज डेवलपिंग है जिनके पास हर खतरे के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, और लोकल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पास हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करें, जो उनके पास है वो हम उनसे लें, और यदि हम ये सब करते हैं तो किसी भी खतरे से हम निपट सकते हैं। और आज मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास रडार है, हमारे पास ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन की हब्स हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, तो फटाफट जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है कम्युनिटी के आखिरी लोगों तक। हाँ, ये सुनिश्चित करना है कि ये जो जानकारी है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, कि कौन सा वाला एरिया है जहाँ पे अर्ली वार्निंग की जरूरत है, तो वहां तक उस कम्युनिकेशन के लिए आप चाहे कैसा भी करें, चाहे उसको टेलीविजन से, रेडियो से, यदि बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप कम्युनिटी रेडियो से कर सकते हैं। टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो आ गए हैं, जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, आप उसको पीछे 100 बार वाइंड करिए, वो आप 1.5 घंटा चलेगा।
1: आनंद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कई बार पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, वहां से धाराएं निकलती हैं, और भूजल को बचाने के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर सूखे की स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे जो आसपास जो है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, नाले हैं, फ्लड स्टॉर्म जो ड्रेन्स होते हैं वो हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इन सब को हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है, और उनकी जिसे कहते हैं ना, तो पहले एक सिस्टम था हमारे पास किस तरह के तालाब को बनाया जाना है और कैसे उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो उसमें हमें लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हर यदि क्षेत्र में हमारे पास तालाब हो तो आपका पानी उसमें भरा रहेगा, तो जब कभी वर्षा कम होगी तो तालाब से पानी यूज कर लिया आपने, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए हो, और उसी से पानी से आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। और नदियों को प्रदूषित ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वही पानी हमें काम आता है और वो भी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। पूरी चीज आपस में कनेक्टेड है। यदि पहाड़ों का नष्ट करेंगे तो उसका प्रभाव प्लेन्स में पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति को बचाना है, और यदि हम इसमें लोकल आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि उनको उससे लगाव है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, लाइवलीहुड उसको उसी से मिलती है, वो उसको खराब नहीं करेगा, तो उसको इन्वॉल्व करना है उसके साथ।
1: आनंद जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से

0: इनकी मात्रा से लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वार्षिक लेन देन की मात्रा 2016-17 में मात्र 1,78,00,000 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। इसी अवधि में लेन देन का मूल्य भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 314,00,000 करोड़ हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्री डोभाल और श्री वांग यी दोनों सीमा वार्ता तंत्र के विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में करीब 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान तलाशने के लिए बनाया गया था। न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर पर प्रवासी भारतीय समुदाय की महिलाओं ने एक विशेष आयोजन में भारतीय साड़ियों के रंगों और विविध रूपों की कालजयी खूबसूरती, समृद्ध विरासत और भारत की सांस्कृतिक विविधता को गर्व के साथ पेश किया। टाइम्स स्क्वायर पर रविवार को साड़ी गोज ग्लोबल कार्यक्रम का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालत पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को डेटा सेंटर्स के लिए एक बेहद आकर्षक और मजबूत गंतव्य के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और देश को बड़े वैश्विक निवेशकों से 200 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। एक रिपोर्ट।
4: टोक्यो में जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसेई के साथ हुई बैठक में श्री गोयल ने कहा कि भारत जापान साझेदारी को चार मुख्य स्तंभों, व्यापार में वृद्धि, तकनीकी सहयोग को मजबूत करना

0: निवेश बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देने के आसपास केंद्रित किया जा सकता है। इससे पहले टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापान की कंपनियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बड़े सुधार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसे विशेष ढांचे पर काम कर रही है जिसके तहत भारत में उत्पादन इकाई लगाने वाली उच्च तकनीक कंपनियों को आवश्यक उपकरणों और कलपुर्जों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि देश में सेमीकंडक्टर की मांग वर्ष 2032 तक 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष 7.7% की विकास दर दर्ज की है और देश वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले को तत्काल रोकने का आग्रह किया है। गुतेरेस ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आग्रह किया। इसमें समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून शामिल हैं। इसके साथ ही काला सागर, होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर में नागरिक जहाजों, बुनियादी ढांचे और नागरिक नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। ब्रिटेन ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि ओमान के पास एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से हमला किया गया और अन्य जहाजों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत और गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजीरा ने की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अमेरिका की उप विदेश सचिव एलिसन हुकर के साथ भारत अमेरिका इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक वेंचर पहल को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी बातचीत की। ये पहल दोनों देशों के नेताओं ने पिछले वर्ष शुरू की थी। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारतीय श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक अवसंरचना पर हमलों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आर एस रघु विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. External Affairs Minister S. Jayshankar holds talks with his Russian counterpart Sergei Lavrov in Moscow on bilateral and global issues. UN Secretary General Antonio Guterres calls for immediate end to attacks on commercial shipping and civilian infrastructure, and

0: And with that, we come to the end of tonight's Western Music Program. Thank you very much, dear listeners, for joining. And do join us tomorrow for another brand new edition of the Western Music Program here on the Sanchaita channel of Akashvani, Kolkata. And now please stand by for the news from Delhi.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath, main Bhav Taruni. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. India Today highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behl, was addressing the media in New Delhi today. He said the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Supreme Court today agreed to consider setting up a special bench to hear the centre's plea on OBC creamy layer criteria. The centre has sought clarification on the applicability of the 11th of March judgment of the Apex Court for candidates of the Civil Services Examination 2025. The Delhi government has said there is currently no shortage of onions or sugar in the capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reviewed their availability and prices in the national capital today. Government said if the prices rise further, it will procure onions and sugar from a central government institution, NAFED, and arrange to make them available at various locations across the capital. It is also assured that the items will be sold at the procurement price, while the Delhi government will cover transportation and other related costs. The government has debunked claims circulating on social media that the central government will provide 1 year of free mobile recharge to all women on the occasion of Raksha Bandhan. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, said that the video is fake. The PIB said that no such announcement has been made by the central government. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of Colombo Test, Sri Lanka trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal's centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh and East Rajasthan tomorrow. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain during the day. IMD has said that cloudy sky conditions will continue to prevail over Delhi with spells of light to very light rainfall for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.